और अगर बहुत करके दिखाता तो तुम लोग जी छोड़ देते और जो काम दरपेश था उसमें झगड़ने लगते, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया। बेशक वो सीनों की बातों तक से वाकिफ है। और उस वक्त जब तुम एक दूसरे के मुकाबिल हुए तो काफिरों को तुम्हारी नजरों में थोड़ा करके दिखाता था और तुमको उनकी निगाहों में थोड़ा करके दिखाता था, ताकि अल्लाह को जो काम करना मंजूर था उसे कर डाले। और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है। मोमिनों, जब कुफार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करो, ताकि मुराद हासिल कर लो। और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और आपस में झगड़ा न करना, कि ऐसा करोगे तो तुम बुजदिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और सब्र से काम लो, कि अल्लाह सब्र करने वालों का मददगार है।

जी हा समुझ आया अॼु 5 अक्टूबर यानि उस्ताद जो आलमी ॾींहुं आहे उस्ताद जूं तमामु सुहिणियूं ॻाल्हियूं ऐं पाण बि जेको अॼु हिन माइक्रोफोन ते वेठा आहियूं ऐं असांजो हिकिड़ो सिंध जी समूरी सिंध में पंहिंजो आवाज़ु वञे पियो त इहा बि उस्ताद जी महिनत आहे असां जेको बि कुझु आहियूं पाण हिन वक़्तु छा बि आहियूं कुझु बि आहियूं पर इहा असांजे उस्ताद जी महिनत आहे ऐं समुझा अफ़सोस सां चवणो पए थो त कुझु वरनि खां असां उन हस्तीअ खे विसारे वेठा आहियूं ऐं उहा हस्ती हिन वक़्तु कंहिं ॿी नज़र सां ॾिठी वञे थी चवण वारा चवनि था त उन में कुझु अहिड़नि उस्तादनि जो बि अमल दख़ल आहे जेकी सिर्फ़ु पंहिंजे पेशे खे पघार हासिलु करण ताईं बि महदूद करे वेठा आहिनि ऐं पंहिंजे फर्ज़ खे फर्ज़ु सम्झी अदा नथा कनि जिन जे करे उस्ताद हस्तीअ ते अॼु जा माण्हू आङुरियूं खणी रहिया आहिनि जंहिंजो जेतिरो अफ़सोस कजे ओतिरो ई घटि आहे ऐं सिमझा अचो त असीं सभु पंहिंजनि फर्ज़नि खे ईमानदारी ऐं सचाईअ सां निभायूं ऐं हिन मुआशिरे में हिक ॿिए जे एतराम खे अवलियत ॾियूं ऐं उनखां वधीक अवलियत ॾींदासीं पंहिंजे उस्ताद हस्तीअ खे।

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
1: फातिह मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Hardiya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: Brought to you by Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: Aur koi ek

0: सारे के सारे कोलैप्स करने का पहले दूसरे और तीसरे नंबर पर एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज चीफ मिनिस्टर के पी। और कोई एक जान जाती है, ये क्लैरिटी के साथ, अल्लाह ना करे कोई एक जान जाती है, उसका जिम्मेदार सुहेल अफरीदी हो। इस चीज को उनको समझ लेना चाहिए। हर मुमकिन हद तक कानूनी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। जो भी तोहीन अदालत की बनती है उस पर कहीं कोई किसी किस्म की नरमी नहीं की जाएगी। जो लोग अरेस्ट होंगे इस धरने के लिए जो इकट्ठे हो रहे हैं, उनका बिल्कुल जिस तरह ट्रायल होता है।
1: गालिन जी नाकामी जो जिम्मेवार सुहेल अफरीदी है, इस्लामाबाद से चढ़ाई कर दींदी एक भी जान जाया थी तो जिम्मेवार सुहेल अफरीदी होंद। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी जी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस सदर चवण हो तो मुहदे से 99% इतफाक चुको हो। सदर के कापी दिखारे वापस आयस तो सुहेल अफरीदी मुहदो तब्दील कराए छो। फैसला सुहेल अफरीदी के करना हुआ तो पा छो न आयो, खबर हुए हा तो मुहदो कयो वेंदो तो गालियों ही न कयूं। हा असा दहशतगर्दी के मामले

0: अब थोड़ा मी टाइम बनता है।
1: हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
0: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
1: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
0: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
1: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
0: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
2: सुपर वाइट।
3: हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

बीजेपी के जेवर वजीर सोहेल आफरीदी के आलम जी कमेटी के जारी कल मसौदो जारी कर छो। सोहेल आफरीदी है ड्राफ्ट में को भी गैर आइनी या गैर कानूनी मुतालबो ना है। मुतालबो हो तो वजीर आजम अपोजिशन लीडर विच में मुलाकात जो बंदोबस्त किया वे। वजीर आजम हुकूमती इतिहाद पीपी ए अपोजिशन पार्टियों के नुमाइंदन की एक गडियल सियासी कमेटी जोड़ी वे। पीटीआई बानी ए बुशरा बीबी के जे

0: जी अहमद उस्ताद जी फजीलत अहमान के खबर आई फराद कंदे जैसे अला पाक हज़रत जिब्राइल के जरिए पंहिंजे महबूब खे मां चवंदो आहियां त इहो इलाही पेशो आहे जेके असां पैगंबरी पेशो चवंदा
1: आहियूं
0: हिते मूंखे इलाही पेशो लॻंदो आहे भई नबियुनि जा सरदार असांजा नबी साईं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सलाह वसलम जन फरमायो आहे त अञा मोलन मां उस्ताद आहियां हिते वरी असां चवंदा पैगंबरी पेशो आहे
1: हाणे
0: अज़मत हिते दंग थी थिए साईं उस्ताद पैगंबरी पेशे सां तालुक रखे थो ऐं वरी मां हिन वरी शुरूआत कयां वरी ॿी तरह त उस्ताद हिकु फारसी ॿोली जो लफ़्ज़ आहे
1: जंहिंजी
0: माना आहे सेखारींदड़ सवारींदड़ सिधो रस्तो ॾेखारींदड़ रहनुमाई कंदड़
1: कंहिं
0: इल्म या फन जो माहिर हुजे साईं इहो उस्ताद ऐं उहो उस्ताद उहो शख़्स आहे जेको सबक पूरो करे या किताब पूरो करे पर ॿार जी लिकियल सलाहियतुनि खे ज़ाहिरु करे
1: सही
0: ऐं उस्ताद जॾहिं क्लास में दाख़िल थो थिए त साम्हूं रुगो शागिर्द न पर मुस्तक़बिल जा महिमान वेठा हूंदा हिकिड़ो समाज वेठल हूंदो आहे हिकिड़ी क़ौम वेठल हूंदी आहे
1: बिल्कुलु
0: उस्ताद जी साईं असां अज़मत ते फज़ीलत ते त वॾो ॻाल्हाईंदा
1: आहियूं
0: पर उस्ताद जूं जेके ज़िमेदारियूं आहिनि या उस्ताद ते जेके फर्ज़ आयद थियनि था त उन ते बि वरी थोरो ॻाल्हाइणु घुरिजे उस्ताद खे जेकॾहिं असां हिदायत जा चराक चऊं था उस्ताद खे जेकॾहिं असां ॾींहं ॾिसल चऊं था त रोशनी फैलाईंदो आहे छा उस्ताद जे अंदर में उहा रोशनी हाणे रही
1: आहे
0: असां उस्तादनि खे वॾा लक़ब बि ॾियूं था
1: बिल्कुलु
0: छो जो साईं जॾहिं क़ौम जो मयार घटि थो थिए शागिर्दनि जो मयार घटि थो थिए शागिर्दनि में तालीम ऐं तरबियत घटि थी थिए त इन में मां कुझु सिर्फ़ु उस्ताद खे चवंदुसि हिकु इहो बि आहे
1: साईं
0: बाक़ी उस्ताद उस्ताद महिनत करे महिनत में अज़मत आहे महिनत उस्ताद जी सुञाणप आहे महिनत उस्ताद जो तारुफ़ आहे जीअं हिकिड़ो हारी आहे सॼो साल महिनत थो करे हर थो हलाए निज थो छटे पोइ फसल थो थिए वण थो पोखे वण शाम थो ॾे मेवो थो ॾे
1: ऐं
0: वण जी शाम में जॾहिं उस्ताद वेहे थो
1: उहो
0: हारी हिकिड़े शागिर्द मूंखे चयो साईं दुआ त कजो मां दुआ खे छा चवां दिलि मां ख़ुदि निकिरी आई
1: ऐं
0: हक़ीक़त अथव ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐं जेके नथा मिलनि उन्हनि खे भला ख़ुशि करे पर जेके मिलंदा आहिनि दुआऊं वठी ईंदा आहिनि उस्ताद हासिन उस्ताद जी अज़मत त सॼो ॾींहुं ॻाल्हाइजे त हुनजी अज़मत होचणी न आहे बाक़ी उस्ताद जा कुझु फर्ज़ पिया आहिनि
1: जीअं
0: ॾिसो न उस्ताद जो ॿार सां रवैयो सुठो हूंदो त ॿार ते असर पवंदा उस्ताद ॿार जी इनकरेजमेंट कंदो माना हिमत अफ़ज़ाई कंदो त ॿार अॻिते वधंदो हूअं त साईं नेकी जेका आहे न नेकी हिमत अफ़ज़ाई सां वधंदी आहे
1: बेशक
0: ॿार हिमत अफ़ज़ाई सां अॻिते वधंदो आहे दरके सां प्रेशर सां ॿार अॻिते न आहे वधंदो उस्ताद जेकॾहिं ॿार ते एतमाद कंदो त ॿार ज़िमेदार बणिजी वेंदो
1: ऐं
0: वरी उस्ताद ॿार जी का बि ॻाल्हि बर्दाश्त कंदो त ॿार ग़लतीअ जो पाण एतराफ़ कंदो ऐं उस्ताद वरी जेकॾहिं माफ़ कंदड़ हूंदो त ॿार अहसानमंद रहंदो
1: ऐं
0: उस्ताद बाद किरदार हूंदो त ॿार में अख़लाक पैदा थींदो साईं
1: ऐं
0: उस्ताद असां ईअं चवंदा आहियूं साईं उर्दू में बि चवंदा आहिनि त हमेशह बड़ो खे इज़त करो
1: बाबा
0: वॾनि जी इज़त कयूं त छा नंढनि खे छा कयूं ज़िक्र कयूं त जीअं हिकिड़ो जुमिलो मां चवंदो आहियां त उस्ताद जेकॾहिं ॿार जी इज़त कंदो न त ॿार वरी ख़ुदि इज़त करणु सिखंदो
1: साईं
0: उस्ताद महिनत कंदो त ॿार महिनती बणजंदो उस्ताद साफ़ सुथरो रहंदो त ॿार सफ़ाई सां प्यारु कंदो
1: ऐं
0: जेकॾहिं उस्ताद सच थो ॻाल्हाए त ॿार कूड़े खां पासो कंदो उस्ताद जेकॾहिं ॿार ते तवजो ॾींदो त ॿार गफ़लत न कंदो
1: तवजो
0: त ॾे न जीअं हिकिड़ी ट्रेनिंग में असांखे उस्ताद ॿुधायो असांजा पाण उस्ताद आहिनि, ॾिसो असां हुननि जी ॻाल्हियूं यादि था कयूं अॼु
1: बि,
0: त चई जॾहिं पंहिंजो ॿारु रहंदो आहे त दिलि में सूरु पवंदो आहे, पर जॾहिं ॿिए जो ॿारु रहंदो आहे त दिलि में सूरु पवंदो
1: आहे।
0: त जॾहिं असांखे दिलि में सूरु पियो न, त पोइ सम्झो त हुन क़ौम खे असां पंहिंजो कयोसीं, हुन ॿार खे पंहिंजो कयोसीं। साईं छाकाणि त ॿार जेको आहे न उस्ताद जो अक्स आहे, जीअं हिकिड़ी

0: मां चाहियां थो त उस्ताद खां मां चाहियां थो त पंहिंजो फर्ज़ निभायां मां चाहियां थो त सॼो ॾींहुं पढ़ायां
1: सही
0: न साईं असां जेको आहे न बाए चांस टीचर तमामु घणा साईं
1: सही बाए चांस
0: टीचर तंहिं करे जी साईं
1: अलाह सां ख़ुशि कंदो तव्हां असांजे प्रोग्राम रोशन सुबुह में जी एफ एम एटीएल जे नेटवर्क ते टाइम ॾिनो तव्हांजी वॾी महिरबानी सर लख कुर्ब वॾी महिरबानी सर वॾी महिरबानी लख कुर्ब जी हा समय असांजो तमामु बहितरीन उस्ताद साईं अब्दुल हलीम सुमरो साहिबु जेको नसीराबाद सां तालुक़ु रखे पियो हिन वक़्तु बि वाराहे पंहिंजे स्कूल में पढ़ाए पियो जंहिंजी शुरूआति प्राइमरी उस्ताद खां ऐं अंग्रेज़ी उस्ताद खां एस एस टी खां ऐं पी एच डी होल्डर बि आहिनि साईं जन एम फिल ऐं साईं जन पाण एल एल बी लेख पंहिंजो वकील बि आहिनि ऐं हिन वक़्तु पंहिंजो प्रोफेसर आहिनि साईं जन स्कूल में एसोसिएट प्रोफेसर आहिनि तव्हांजो साईं जो तालुक़ु उस्तादी घणे सां साईं जो वॾी महिरबानी जिन असांखे पंहिंजो उस्ताद जी अहमियत ते रोशनी विधी साईं जा लख कुर्बानी।

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
2: It's time to commercial break.
3: Skin aur inhe jalai cha
4: damage it does skin ke kayo
3: out par you kiye to ke khape
4: super white dry collagen beauty cream
3: je me aahin char anju khubi ho
4: ai kojic acid formulation jo jild ke restore kare unhe jild mein ki lock kare ai char anju khubi ho jild ma fine lines and jhuran ki ghatkan ai wrinkles ki ghat kare sirf trim nihan mein jild ke badhaye naram mulayam ai bright जरूरत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जहाँ जी हर कतरे साफ चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.

खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए

0: ऐं चमकदार सिर्फ़ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

stop.

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज,

0: उहा एतिरी त वसी आहे जो असां हुनखे बयान नथा करे सघूं।
1: सही।
0: पर पोइ बि असां दिलि अल्फाज़नि में ईअं चवंदासीं, उस्ताद हिकु पैगम्बरी पेशो आहे
1: जी जी
0: मुस्लमान हुअण जे नाते, पर जेकॾहिं असां इंसानियत जी ॻाल्हि कयूं, यूनिवर्सली ॻाल्हि कयूं, उस्ताद हिकु वॾो पेशो आहे। हुन में तव्हां ॾिसो जेके ब्यूरोक्रेट्स आहिनि, जेके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इवन जेका बि तकलीफ़ तव्हां ॾिसो था न, इहे सभु उस्तादनि जी प्रोडक्ट आहे।
1: उस्ताद बिल्कुलु।
0: ऐं हिन ॻाल्हि ते आउं ईअं ई चवंदुसि, मिठाई पुटु तपी थधी का काने का वेल वेहण जी मथां थी हूंदा पेर न इहो पस मंज़र बि इहो ई आहे जॾहिं असां पढ़ाईंदा आहियूं ऐं असांजी इज़त मिलंदी आहे, यूनिवर्सिटी वेंदा आहियूं या किथे बि इवन के हजम जी दुकान ते या के रेस्टोरेंट ते, त असांजा जेके प्यारा हूंदा आहिनि शागिर्द हूंदा आहिनि, उहे असांखे सलाम कंदा आहिनि, एॾी रुहानी सुकून मिलंदो आहे,
1: तव्हांखे
0: छा ॿुधाइजे, अख मां गोरा निकिरी पवंदा आहिनि।
1: सुभान अल्लाह, हक़ीक़त आहे यार।
0: हा, इहा हिकु हक़ीक़त आहे।
1: जी जी।
0: हा, मुंहिंजो हिकु तजुर्बो आहे, पुलिस में बि रहियो हुउसि इंदौर में, हेसि आहे 2021 खां 2023, पोइ वरी मूं कमीशन इहा लेक्चरशिप जी ॾिनी। हिते एतिरो माना सुकून आहे, पुलिस बि हिकु सुठो इदारो आहे, पर वरी उस्ताद बि ऐं पेश वराना जेके सलाहियतूं आहिनि उहे जॾहिं असां पालिश कंदा आहियूं, ॿारनि जो नसुल सुधारींदा आहियूं, डॉक्टर थियनि, इंजीनियर थियनि, सॼो मुआशो ओॾी महिल तब्दील थी पियो वञे सर।
1: वाह वाह वाह, बिल्कुलु सर, इहे उस्ताद जूं महिनतूं आहिनि, इहे तव्हां उस्ताद आहियो, प्रोफेसर, लेक्चरर आहियो, इहे तव्हां जूं महिनतूं आहिनि सर, जेको अॼु उहे रंग लाहिनि थियूं, ऐं तव्हांजा शागिर्द उस्ताद त उस्ताद ई आहे, पर जेको शागिर्द आहे उहो वॾी मंज़िल ते पहुची वेंदो आहे।
0: असां ईअं ई आहे बिल्कुलु, उस्ताद हिकु लर्निंग प्रोसेस आहे, हुन में जेको हूंदो आहे स्टूडंट, उहो वक़्तनि स्टूडंट हूंदो आहे, पोइ अॻियां हली वरी उहो उस्ताद थींदो आहे। ऐं असांजी जेका न टीचिंग फील्ड, उहा असांजे वालदीन खां ई स्टार्ट थिए थी, जेके वालदीन आहिनि उहे मेन उस्ताद आहिनि।
1: सही।
0: अॻियां हली करे सरकारी लेवल ते असां उस्ताद आहियूं, पर हर हिकु माण्हू जेको असांखे इल्म थो ॾे न, हज़रत अली अलाम उहो असां लाइ हिकु उस्ताद थी छॾे थो। हुन में जीअं तव्हां आहियो, तव्हां बि पंहिंजी कंट्रीब्यूशन ॾियो था, दर्श ॾियो था, तव्हां बि उस्ताद आहियो जेकॾहिं हक़ीक़ी ॻाल्हि कयां।
1: जी जी साईं, मुंहिंजा परे साहब
0: ख़्याल आहे न,
1: तव्हांजी वॾी महिरबानी, असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो, तव्हांजा लख कुर्म परे साहब।
0: सर महिरबानी, ख़ुशी थी ऐं ॾाढी ख़ुशी थी जो तव्हां असांखे मौको ॾिनो, तव्हांजा वॾे महिरबानी सर,
1: वॾी महिरबानी, लख कुर्ब। जी असां में प्रोग्राम रोशन सुबुह में असांजो दोस्त लेक्चरार प्रोफेसर परवेज़ कलोड़ो, जंहिं पंहिंजे उस्ताद जी अहमियत ते रोशनी विधी, साईं जी वॾी महिरबानी।

0: अजय समय प्रोग्राम रोशन सुबह आमद पाया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क ता माव जो मेज़बान नेमतुल्लाह जुने जो समय के खबर है यकीन अजो प्रोग्राम मुकम्मिल हलो है त 5 अक्टूबर के हवाले से उस्तादन जो आलमी ढी है मुख्तलिफ़ वीचार उस्तादन जहाँ तीन जरूर पहुंचायासीन वक्त असा लाइन से मौजूद है उस्तादी घराने से ताल्लुक रखंदड़ प्राइमरी उस्ताद जो पुट नानो भी उस्ताद मामा भी उस्ताद जिनका भैर भी उस्ताद पान भी उस्तादी पेशे से ताल्लुक रखंदड़ असो अहमद अली बिरोही जो पो अंग्रेजी मास्तर जीएसटी चौं जीएसटी का जैसे शुरुआत थी इन वक्त हेड मास्तर आज 17 ग्रेड में एलिमेंट्री बॉयज स्कूल बागोदरो कंबर जहाँ जी एम फिल जैसी थियल है पी एच डी होल्डर आन उस्ताद साईं सां उस्ताद जी अहमियत ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं साईं खे प्रोग्राम में भलीका चवंदासीं अस्सलाम वालेकुम भाउ
1: वालेकुम सलाम साईं रहमतुल्लाह बरकात
0: साईं तव्हांखे प्रोग्राम रोशन सुबुह में भलीका चऊं था जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां अक्टूबर के हवाले से उस्ताद जो आलमी ढी है उन हवाले से उस्तादी घराने से ताल्लुक रखो पाया पा उस्ताद आयो इन वक्त सो हेड मास्टर आयो 17 ग्रेड जहाँ उस्ताद की अहमियत के कि था बयान कर
1: माशाला साईं उस्ताद जो मुखदस तदरीसी पेशो है अल्लाह तुम यानी उस्ताद कर मोकिल है अल्लाह तला शुक्र है जो असा भी इन पेशे से वाबस्ता रखे है तो अल्लाह तला असा के इन कौम जो बुनियाद रखंदड़ कर बनाय मोकिल है उस्ताद न फकत बार की किरदार साजी कह पर उनकी सोच भी तब्दील कह जेन साजी कह अल्लाह ताला उस्ताद मान मरतबो तमाम है।

0: 이 배가버린 배치에서 왔도록 하려나 해.
1: 예, 예.
2: अच्छा माशाल्लाह सर जेके उस्ताद तव्हां धराया आहियो पंहिंजो तमामु घणे टाइम खां उस्ताद आहियो अच्छा जॾहिं तव्हांजो को शागिर्दु वॾो हिकिड़ो आफ़िसर वॾी कंहिं मंज़िल ते पहुची करे तव्हां सां

उस्ताद अहमद अली बिरोही जेको हिन वक़्तु एम फिल पी एच डी होल्डर आहे ऐं एलिमेंट्री बॉयज़ स्कूल बागोदर मां 17 ग्रेड जो उस्ताद आहे, हेडमास्टर आहे। साईं जी वॾी महिरबानी, लख कुर्ब। त समय असांजो प्रोग्राम रोशन सुबुह जी पंहिंजो वक़्त जी पुॼाणी पई थिए। वरी ईंदड़ हफ़्ते इनशाला ईंदड़ प्रोग्राम में असां मुलाक़ात ज़रूरु थींदी। तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमतुल्लाह जुणे जो ॾींदा इज़त अलाह निगाहबान।

ते पीटीआई वफ़द ॾाढो रखियल मुतालबनि में कहिड़ो मुतालबो गैर आइनी या बस खां ॿाहिरि आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरी चयो आहे त असांजो पहिरियों मुतालबो टीटीपी ऐं दहशतगर्दनि जी मज़म्मत, ॿियो केपीके में दहशतगर्द ठिकाणनि जो मुकमल ख़ात्मो ऐं टियों अफ़गानिस्तान बाबति परॾेही पॉलिसी ते अमल करणु आहे। असांजो असल मक़सदु लॉन्ग मार्च रोकणु न पर दहशतगर्दीअ जो मुकमल ख़ात्मो आहे।

अचे इलाके शाह लतीफ थाने की हद में एसआईयू की कार्रवाई फायरिंग की डेवट में एक डुहारी मार्ज वो पुलिस चवण है तो साले गोट में ताई गुरबल भत्ते खोर समर काठियावाड़ी की मौजूदगी की इतला से कार्रवाई कई फायरिंग की डेवट में एक डुहारी के जख्मी हालत में गिरफ्तार किया वो जैसे दम दई छो मार्जी वै डुहारी की सुणप जो अमल जारी है।

0: खान वान में कार जो टक्कर लगने सबब फौत थी वियल निजी कंपनी के ऑफिसर के वारसन जो एतराज हुई मुजाहिरो मुजाहिरन चयो आए तो वी डी अग कौमी शाहरा ते फेरुद्दीन के कार जो टक्कर हणी मारो वो पुलिस बासर जवाबदारन खिलाफ केस दाखिल करण बदरा रुलाए रही है इंसाफ कयो वने
1: आपको मालूम है कि छाती का कैंसर एक खतरनाक और जानलेवा मर्ज है और पाकिस्तान में हर 9 में से एक खातून ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो सकती है लेकिन बरवक्त तशखीस और इलाज से कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। इसके लिए खवातीन हर महीने अपना जिस्मानी मुआयना खुद करें और सीने या इसके अतराफ में गिल्टी या किसी भी किस्म की गैर मामूली तब्दीली महसूस करें तो फौरन अपने डॉक्टर से राब्ता करें ताकि बरवक्त इलाज आपको इस मूजी मर्ज से बचा सके। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे फोन नंबर पर राब्ता करें और आज ही पहला कदम उठाएं।

0: अब थोड़ा मी टाइम बनता है।
1: हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
0: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
1: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
1: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
3: सुपर वाइट।
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाई प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स। सुपर वाई प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स जो कि आपको बनाएंगे बहुत ज्यादा खूबसूरत। और पूरे प्रोग्राम में हम इस बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन हम प्रोग्राम में सबसे पहले आगे चलेंगे और वक्त की बात करेंगे। तो जी वक्त हुआ जाता है 11:15 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है, तमाम तर लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शे में है, कार में है, बाइक पे है, जिस पर जहां भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी बट इट द नेवर। अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बफसले खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कले खुदा खैरियत मतलू। वो तमाम तो लो जो कि लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। जो लोग की बर्थडे है तो मैं मैंने हैप्पी बर्थडे सब दे, जो लोग बीमार है उनको कहेंगे गेट वेल सून। शहरों शराहों वादियों पहाड़ों दरियाओं और मर गुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे पर करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबा बखैर आगे जी आया नुसरत बिस्मिल्लाह। सुपर वाई के प्रोडक्ट जो कि आपको खूबसूरत, हसीन और जाजिबी नजर बना रहे हैं। सुपर वाई के तमाम प्रोडक्ट जो कि आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा मुफीद और मौजू हैं। सुपर वाई के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं जी? सुपर वाइट की आती है विटामिन सी क्रीम, सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम, उसके अलावा सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट की एंटी एक्ने फ्रेकल क्रीम और सुपर वाइट की राइज ब्यूटी क्रीम। साथ में इनके बूस्टर्स और सीरम भी आते हैं। सुपर वाइट की ऑयल फ्री एक्ने क्रीम भी आती है। इसके अलावा सुपर वाइट के फेस वॉशेस की बड़ी अच्छी रेंज है। ऑयल कंट्रोल फेस वॉश आता है सुपर वाइट वालों का। इसके अलावा सुपर वाइट का राइस कोलेजन फेस वॉश आता है। सुपर वाइट का सोप भी आता है जी, ब्यूटी सोप कोजिक एसिड के साथ राइस सोप है जी। इसके अलावा सुपर वाइट का फेस वॉश कोरियन फॉर्मूला स्ट्रॉबेरी ब्राइटनिंग फेस वॉश। इसके अलावा सुपर वाइट का टर्मेरिक फेस वॉश भी आता है। सुपर वाइट का विटामिन सी फेस वॉश। ये फेस वॉश इसकी बड़ी अच्छी और खूबसूरत सी रेंज जियो की आपको खूबसूरत बनाएगी और बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाएगी। तो जी प्रोग्राम में बहुत कुछ होगा प्रोडक्ट्स के बारे में, मजीद और भी बहुत सारी ऐसी बातें और बहुत सारी ऐसी फार्मूलाज और बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स जिनसे आप इस प्रोडक्ट्स को यानी कि इन तमाम प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती को लगा सकते हैं 4 से ज्यादा चांद। तो प्रोग्राम में हम आगे चलेंगे और सबसे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला

मैं प्रोग्राम का पहला गाना शुरू करने जा रहे हैं और दिस सॉन्ग इज बाय द वन एंड ओनली नबील शौकत, जिसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स. प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, प्रोग्राम में प्रोग्राम का

Okay, जी ब्यूटीफुल सॉन्ग और आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स, बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स और सुपर वाइट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपकी खूबसूरती को लगा रहे हैं, चार से ज्यादा चार जैसे कि मैंने बताया, और सुपर वाइट के इन तमाम प्रोडक्ट्स को आप मार्केट जाके बाय कर सकते हैं जी। और अगर आपको नहीं मिलते तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने हेल्पलाइन नंबर पर इनके कॉन्टेक्ट करना है, और हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बताने जा रही हूँ, और हेल्पलाइन नंबर है जी 03 7025683 21। एक बार फिर से दोहराऊंगी, वो लोग जो कि स्लो हैं और स्लो कैच करते हैं चीजों को, तो 03 7025683 21। ठीक है जी, ये कॉन्टेक्ट नंबर मुमताज हसन खान साहब का, जिनको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जी। हेल्पलाइन नंबर है इनका, दूसरा हेल्पलाइन नंबर है जी सखर और लाड़काना के लिए। पहले वाला है जी हैदराबाद के लिए हेल्पलाइन नंबर, इसके अलावा सखर और लाड़काना के लिए आप इमरान साहब को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर है 03147544462। ठीक है जी, इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं सखर और लाड़काना वाले स्पेशली 03147544462। ठीक है जी, इन नंबर्स के ऊपर आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और जी इसके अलावा सुपर वाइट के बहुत हसीन और खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट, जिनमें स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम, क्या कोरियन फार्मूला, कमाल का फार्मूला कोरियन स्किन बनाने के लिए जी। और कोरियन स्किन बनाएंगे आप लोग, इसको आप डेली रूटीन में डेली बेसिस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी, यानी कि दिन और रात में, पहले ही 3 दिन में आपको विजिबल और वाजे फर्क दिखते हैं। और क्यों दिखते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट मौजूद है जी, और आपकी स्किन को दे रहे हैं ब्राइटन अप लुक। और इसके अलावा जी इसका जो फॉर्मूला है वो नेचुरल स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट्स के साथ तैयार किया गया है, आपके डार्क स्पॉट्स को खत्म करता है, आपकी डल स्किन को मजीद और ज्यादा खूबसूरत बनाता है, डल नहीं रहने देता, कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है। और इसके अलावा जी वो तमाम तो लोग जिनकी स्किन पे एक्नी और छाइयों का इशू है तो वो भी खत्म हो जाता है, तभी तो बनती है आपकी कोरियन ग्लास स्किन। तो अगर आप भी अपनी कोरियन ग्लास स्किन बनाना चाहते हैं सो डेफिनेटली आप लोग यूज करेंगे स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम सुपर वाइट वालों की, जिससे आपको मिलेगा बहुत ज्यादा खूबसूरती वाला लुक।

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: It's time to commercial break.
3: खुश एंड बीरोनो की स्किन और इमेज लाइट था
4: डैमेज एंड डल स्किन के कयो
3: आउट पर यू किए तो के खबे सुपर वाइट ड्राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चावरन की खूबियों एंड कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन्हें जी नमी की ब्लॉक करे एंड चावरन की खूबियों जल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन की घट कर एंड रिंकल्स की घट करे सिर्फ ट्रिल नीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर

0: और फ्रेश बनाए। आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: बीरोनो की स्किन हर इमेज लाइट छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चावरन जो खूबियो ए कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ए चावरन जो खूबियो जल्द मा फाइन लाइंस ए झुरन के घट कन ए रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ए ब्राइट उन संगरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जेह जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढाडो सुठो
2: जीए FM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: बताया कि आप इन्हीं के प्रोडक्ट्स में से डिफरेंट फार्मूलाज तैयार करके अपनी स्किन को चाहे फिर वो हैंड एंड फीट की स्किन हो उसको खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा, अब वो कैसे बनाएंगे वो भी मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। अच्छा, हैंड एंड फीट जो फार्मूला है वो तैयार करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक अदद सुपर वाइट की ब्यूटी क्रीम ले लेनी है, कोई भी, ठीक है जी। तो सुपर वाइट की कोई भी ब्यूटी क्रीम ले लेंगे और अपनी पसंद के हिसाब से, ठीक है। वो लेने के बाद उसमें आप लोगों ने उसी की क्वांटिटी के बराबर पेट्रोलियम जेली लेनी है। अब पेट्रोलियम जेली में भी इनके बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, कोकाओ बटर आता है, पिंक रोज का फ्लेवर आता है, इसके अलावा और भी इनके बहुत सारे दूसरे फ्लेवर हैं जी जो कि आते हैं इनकी पेट्रोलियम जली में, ठीक है। वो आप लोगों ने एक अदद पेट्रोलियम जली ले लेनी है और एक अदद जो है सुपर वाइट की ब्यूटी क्रीम लेनी है। सुपर वाइट की ब्यूटी क्रीम में जितनी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के बराबर आप लोगों ने पेट्रोलियम जली लेके उसमें मिक्स कर लेनी है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और मिक्स करके इसको स्टोर कर लें। रात को सोने से पहले इसको अप्लाई करें, ठीक है, और हैंड्स एंड फीट पे अप्लाई करें, अच्छे तरीके से अप्लाई करके एंड सो जाएं। सुबह उठने के बाद वॉश करें, ठीक है, एक अच्छे से सोप से। अगर सोप आपके पास सुपर वाइट वालों का है तो क्या ही बात है। सुपर वाइट वालों का ऑयल कंट्रोल जो है सोप आता है, सुपर वाइट वालों का राइस ब्यूटी सोप आता है, इनमें से कोई भी सोप आप लेके यूज कर सकते हैं, ठीक है। फेस को वॉश करने के लिए सुपर वाइट वालों की रेंज में जितने भी फेस वॉशेज आते हैं उसमें से कोई एक फेस वॉश आप लेके यूज कर सकते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और आप देखेंगे कि जहां आपका चेहरा खूबसूरत हो रहा है वहां पे आपके हैंड्स एंड फीट भी खूबसूरत हो रहे हैं। और वो तमाम तर लोग जो कि कभी ना कभी मेरे ख्याल से नहीं, मतलब हर बार हम अपने कॉम्प्लेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं होते, चाहे फिर वो मर्द हजरात हो चाहे फिर वो खवातीन हो, जो लोग अपने कॉम्प्लेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं है या फिर कॉम्प्लेक्शन आपका जो था नेचुरली उससे भी कहीं ज्यादा डल हो चुका है क्योंकि गर्मी इतनी शदीद पड़ी थी, ठीक है जी, गर्मी की वजह से आप लोगों का कॉम्प्लेक्शन डाउन हो चुका है और जो गर्मी टैनिंग छोड़ के गई है आपके फेस पे आपकी स्किन पे उसको भी तो खत्म करना है, तो उसको खत्म करने के लिए हम यूज करेंगे सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को। और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स में सुपर वाइट की ब्यूटी क्रीम्स बड़ी कमाल की ब्यूटी क्रीम है जो कि टैनिंग क्या, एक्ने क्या, पिगमेंटेशन क्या, आपके सारे स्किन से रिलेटेड मसले मसाइल को हल कर देंगे, ठीक है जी। टैनिंग को खत्म करने के लिए आप लोग खासतौर पर वो तमाम तो लोग जिन लोगों को टैनिंग भी है और जिन लोगों को पिगमेंटेशन भी है, छाइयां हैं और छाइयां किसी भी वजह से आपके चेहरे पे हुई हो तो आप यूज कर सकते हैं सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम, ठीक है। सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम जिसको आप यूज कर सकते हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके बहुत सारे फायदे में एक तो ये एंटी एजिंग क्रीम है, आपकी एंटी एजिंग स्किन को जो है आपकी उम्र से पीछे ले जाएगी, आपको जवान बना देगी, ठीक है जी। इसके अलावा दूसरा इसका फायदा यह है कि अगर आपकी स्किन डल है तो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगी। इसके अलावा आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगी, अगर आपके पोर्स ओपन हो चुके हैं बहुत सारे एक्ने होने की वजह से या बहुत सारी ऐसी चीजें या फिर प्रोडक्ट्स या फिर मेकओवर करवाने की वजह से जिसकी वजह से आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हो चुके हैं तो आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगी, ठीक है, आपके डार्क स्पॉट्स को खत्म करेगी, आपके एजिंग स्पॉट्स को भी खत्म करेगी, आपकी स्किन टोन इवन टोन में आ जाएगी, आपकी जो फेयरनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऑल स्किन टाइप्स के लिए सेफ है और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए इसलिए सेफ है क्योंकि इसमें नेचुरल लेमन एंड नीम एक्सट्रैक्ट्स मौजूद है और साथ में विटामिन सी की बहुत सारी खूबियां। अच्छा, अगर आप इसके रिजल्ट को डबल से ट्रिपल करना चाहते हैं, इसके रिजल्ट को मजीद और इनहेंस करना चाहते हैं तो इसमें फिर आप लोग सुपर वाइट वालों का कोई भी सिरम ऐड करेंगे। आप इसमें सुपर वाइट वालों का राइस सिरम भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप सुपर वाइट वालों का ब्यूटी सिरम जिसको बूस्टर भी कहा जाता है ये ऐड कर सकते हैं तो ये जो आपका रिजल्ट है ना विटामिन सी क्रीम का उसको डबल से ट्रिपल या फिर उससे भी कई ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। सुपर वाइट का ब्यूटी सिरम जिसको बूस्टर भी कहते हैं जी, और ये बूस्टर भी है सिरम भी है, इसका मकसद ये है कि आपके जो भी क्रीम का रिजल्ट है, आपके जो भी फेशियल का रिजल्ट है, आपकी ब्लीच क्रीम का जो रिजल्ट है उसको डबल से ट्रिपल कर दे तो ठीक है। आप इसमें यानी कि ब्यूटी क्रीम में भी और ब्लीच क्रीम में भी आप इसको ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड्स एंड फीट्स का जो मैंने फॉर्मूला बताया उसमें भी ऐड कर सकते हैं आप इसको। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है किसी भी फॉर्मूले का जो आप तैयार कर रहे हैं सुपर वाइट वालों के प्रोडक्ट्स या फिर सुपर वाइट की कोई भी ब्यूटी क्रीम जिसमें आप बूस्टर को ऐड करें, सुपर वाइट का ही बूस्टर लेके, ठीक है जी, तो बूस्टर आपके क्रीम के रिजल्ट को मजीद और इनहेंस कर देगा. पहले ही 3 दिन में बहुत अच्छे विजिबल रिजल्ट आप लोग देख पाएंगे. इनका जो सुपर वाइट ब्यूटी सीरम बूस्टर अल्फा आर्बुटीन नाइसिनामाइड इसमें मौजूद है, विटामिन B3 और कोजिक एसिड है जो कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए हेल्दी और बिल्कुल सेफ है. तो और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है सुपर वाइट वालों के प्रोडक्ट्स चाहिए. और सुपर वाइट के प्रोडक्ट जो कि अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले बड़ी ही क्वालिटी और अच्छे मयार के साथ आप लोगों के लिए तैयार करते हैं, ठीक है जी. और मैं क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी 3 तरीकाकार से आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में. उसमें से जो पहला तरीकाकार है वो है सिंपली मैसेज करने का. तो सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 पे. और कमेंट कर रहे हैं आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे दो फेसबुक पेजेस पे. इस वक्त हमारी ऑडियो स्ट्रीमिंग लाइव जा रही है GFM लाड़काना FM 88.8 GFM 88, ठीक है जी. तो यहाँ पे जाके आप ऑडियो स्ट्रीमिंग पे जो है कमेंट कर सकते हैं. जिन लोगों को मिल चुका है पेज और हमारी ऑडियो स्ट्रीमिंग, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, जहाँ चाहे वहाँ शेयर करें फेसबुक के ऊपर, और लोगों तक पहुंचाएं और उनको बताएं जिंदगी गुलजार है. और वो कैसे है, वो है जी सुपर वाइट के इन हसीन प्रोडक्ट से जो कि आपको हुस्न जमाल देके आपको इंतहाई हसीन बना रहे हैं, ठीक है. तो जी इसी के साथ हम आगे चलते हैं. साथ साथ आप लोग 888 पे भी मुझे मैसेजेस कर सकते हैं. कॉल करने के लिए नंबर आपको बता चुकी हूँ. कॉल लेंगे, कॉल कर सकते हैं आप लोग. टेलीफोन लाइंस आप लोगों के लिए ओपन कर दी गई हैं. तो फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल, चेक करेंगे हम कौन और कहाँ से. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन किधर से.
1: अदर
0: बख्श भाई, कैसे, ठीक ठाक.
1: अल्लाह का करम है, आप सुनाइए.
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मुझे बताएं कौन सा प्रोग्राम सुन रहे हैं.
1: जिंदगी गुलजार है.
0: ओके, किसके तामुन से.
1: वाइट
0: नहीं है, सुपर वाइट है. सुपर वाइट क्या है.
1: सुपर वाइट मेरा बैलेंस जा रहा है. ठीक है,
0: ठीक है, बैलेंस जा रहा है. ठीक है, ओके, और कुछ कहेंगे. ओके, बैलेंस चला गया. वाओ. ओके, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं, चेक करते हैं कौन है कहाँ से. जी हेलो. ओके, कॉल रिसीव नहीं हुई. हेलो.
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम सागर भाई, क्या हाल चाल.
2: खैरियत, खैरियत, ठीक ठाक.
0: ओके, प्रोग्राम सुन रहे हैं.
2: जी मैम, सुन रहा हूँ. मैं जरूर सुन रहा हूँ.
0: कौन सा है, किसके तावन से है.
2: तावन का तो पता नहीं है, जिंदगी गुजार है, यही प्रोग्राम है ना.
0: यही प्रोग्राम है. और मैं किस बारे में बता रही हूँ.
2: पता नहीं क्या, बताओ.
0: प्रोग्राम नहीं सुना आपने.
2: प्रोग्राम यहाँ नहीं चलता है मैम, खैरपुर में नहीं चलता है.
0: खैरपुर में नहीं चलता है, तो फिर आप कैसे सुनते हैं. रेडियो पे सुनते हैं, फेसबुक पे सुनते हैं, कैसे सुनते हैं.
2: नहीं, फेसबुक मेरे पास वो कीपैड वाला मोबाइल है, छोटा मोबाइल है, मैं कॉल करता हूँ बस.
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके. अच्छा, जिंदगी गुलजार है अब से स्पॉन्सर्ड है जी सुपर वाइट वालों की तरफ से. और सुपर वाइट के बहुत अच्छे खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फेस वॉशेज हैं, इनकी ब्यूटी क्रीम्स हैं, इनकी ब्लीच क्रीम्स हैं, पेट्रोलियम जेली है और बहुत कुछ है.
2: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: यस. तो मुझे बताएं कि कोई गाना सुनाएंगे आप.
2: गाना सुनाऊंगा मैं.
0: तो सुना दे, अच्छा सा, सैड नहीं होना चाहिए.
2: प्यार तेरा मैं मुझको जो तोड़ने वाले, प्यार तेरा मुझको जो तोड़ने वाले, जा तो

0: मुझको जो तोड़ने वाला।
1: ओके, और कुछ कहेंगे?
0: और कुछ यही है मैम, आपने बोला था कि जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था आपने कहा था कि जो कॉल करने वाले जो है ना एक बार करो, और दूसरे दिन मैंने दो दिन कॉल नहीं की।
1: ये मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से।
0: जी जी, मैंने कॉल नहीं की, मैंने कहा जब बोल दिया तो क्यों तो थोड़ा रेस्पॉन्स दिया जाए।
1: बिल्कुल ऐसा ही है जी, थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्स का।
0: ओके थैंक यू मैम,
1: बहुत सारा ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज। और ये थे कॉलर 03000113488। बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, गाना सुनाऊंगी आपको, गाना प्ले करने जा रही हूँ, गाना कॉल्ड बुलबुल बाय सबात बात है, इसको सुनेंगे एंजॉय करेंगे और गाने के साथ आगे मूव करेंगे। आपको बताऊंगी सुपर बाइक के प्रोडक्ट से आप और कौन कौन से फॉर्मूलाज तैयार कर सकते हैं।

ओके इसी के साथ एक और गाना प्ले करने जा रहे हैं. द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल बाय किसका गाना है ये गाना है जी निहाल नसीम का. निहाल नसीम का एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि हम सुनेंगे और सुनते सुनते जाएंगे. न्यूज ब्रेक एंड फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट कॉस्मेटिक्स. सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स.

0: Express PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Supervised Rice College and Beauty
5: Cream. Supervised Rice College and Beauty Cream. केपीके में दहशतगर्दी की बाह में सड़ी पो सोहेल आफरीदी रुगो एहतजाज ए धरणन में मसरूफ है वफाकी वजीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस अमीर मकाम है ते केपीके में रियासत की रट खत्म थी चुकी है ए हुकूमत नाले का शह ना सुबह रहा तो सियासत भी रही।

0: अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
1: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
0: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
1: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
0: अच्छा, variants सबके different, लेकिन choice सबकी है। Super.

Okay, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजी रुखसार और आपका मेरा साथ पूरी 1 बजे तक का है जी. और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में 3 तरीके का से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 8881 पे. कॉमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है, डायरेक्ट www.facebook.com/GFM88 के पेज के ऊपर लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग उसके नीचे, ठीक है. और इसके अलावा आप लोग मुझे 8881 पे भी मैसेजेस कर सकते हैं जिन लोगों ने कमेंट कर दिए हैं. कमेंट की तरफ आते हैं एंड देन फिर हम आएंगे जी कहाँ पे. हम आएंगे सुपर वाइट की तरफ और सुपर वाइट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि बहुत खूबसूरत बनाते हैं. अच्छा, हमें जवाहर बच्चल ने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच. रेहाना खान भक्कर से हमें सुन रही हैं. किशोर कुमार हमें सुन रहे हैं. हम आ गए हैं जाने के लिए, कैसे हैं आप? आप तो ठीक हैं, घर वाले आप में सब ठीक हूँ. मतलब अच्छा वही बाबाई हमें सुन रहे हैं. माशाल्लाह आप कैसी हैं? माशाल्लाह मैं ठीक हूँ. माशाल्लाह प्रोग्राम बेहतरीन है और माशाल्लाह सुपर वाइट की तरफ से है. माशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स में रीड कर रही हूँ. माशाल्लाह कॉल्स भी लूंगी. ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह.

सॉन्ग सॉन्ग के साथ साथ हम चल रहे हैं आगे और सुपरवाइक के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको हम बताएंगे. और सुपरवाइक के प्रोडक्ट्स जो कि बहुत खूबसूरत बना देते हैं और आप इससे डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज भी तैयार कर सकते हैं. जी डिफरेंट फार्मूलाज कैसे तैयार करेंगे, सुपरवाइक के प्रोडक्ट्स को ले लेंगे और सुपरवाइक की ब्यूटी क्रीम लेंगे. जी कोई भी लाइक इसमें से आप सुपरवाइक के प्रोडक्ट्स में से कौन सी ब्यूटी क्रीम लेंगे, वाइटमिन सी क्रीम ले सकते हैं, सुपरवाइक की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम ले सकते हैं. इसके अलावा जी सुपरवाइक की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम ले सकते हैं. अच्छा, जिन लोगों को छाइयों का इश्यू रहता है स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया वो वाइटामिन सी क्रीम यूज करें. ठीक है, इसके अलावा जो लोग कोरियन ग्लास स्किन हासिल करना चाहते हैं तो कोरियन ग्लास स्किन जो है आपको मिलेगी स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम जो कि सुपर वाइट वाले स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट के साथ बनाते हैं. अगर आप इसमें सुपर वाइट के बूस्टर को ऐड कर लेते हैं, सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर, सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर, अल्फा आर्बुटीन, नाइसिनामाइड, विटामिन B3, कोजिक एसिड के साथ आपकी क्रीम के रिजल्ट को डबल से ट्रिपल करके आपको पहले 3 दिन में विजिबल रिजल्ट देगा. ठीक है, तो आप बूस्टर को ऐड करें और बूस्टर को ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स करें, स्टोर कर लें क्रीम को, और क्रीम को स्टोर करने के बाद ना रात को सोने से पहले अपने फेस के ऊपर जरूर अप्लाई करें. एंड अप्लाई करने के बाद देखें कि पहले 3 दिन में आपको कितने खूबसूरत रिजल्ट्स मिलते हैं. अच्छा, इसको मजीद और एनहेंस करने के लिए सुपर वाइट का कोरियन फार्मूला स्ट्रॉबेरी फेस वॉश को जरूर जो है आपने यूज करना है, इसको यूज करना ना भूलें. ठीक है, इनमें जितनी भी बार फेस वॉश करें इसी से करें और आप इसको जितनी भी खवातीन हैं और वर्किंग वुमेन्स हैं वो अपने साथ इसको बैग में भी कैरी कर सकती हैं. बैग में कैरी करके आप जो है इसको कहीं भी अपने साथ ले जा सकती हैं, वहां पे फेस को वॉश करके. ठीक है, क्लिनजिंग बहुत जरूरी है फेस की, जहां आप क्लिनजिंग करना छोड़ते हैं वहीं पे मसले खराब होते हैं. ठीक है, तो ये खास ख्याल रखना है और खास ख्याल रखते हुए ना इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करके मुझे जरूर जो है फीडबैक अपना देना है. हेल्पलाइन नंबर बताऊंगी गाने के साथ.

को चेंज करेंगे और गाने के साथ साथ आप लोगों की लाइव कॉल को जो है एंटरटेन करेंगे 03000113488 और साथ में सुपर वाइट वालों का हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बताती जाऊंगी. सो डैड आप उनसे कॉन्टेक्ट करके अपने करीबी मार्केट्स और एरियाज में इन प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवा सकें इजीली. तो हैदराबाद वाले डायल करेंगे 03702568321. मुमताज हसन खान साहब का ये नंबर है 03702568321. इसके अलावा जी सखर और लाड़काना वाले डायल करेंगे 03314 77544 62. इमरान का इमरान साहब का ये नंबर है जी. आप सखर लाड़काना वाले जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो इनसे कांटेक्ट करके अपने करीबी मार्केट्स और एरियाज में इन प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवा सकते हैं. सोनिया दिल नहीं लगता

और इसके अलावा नवी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जी, रिहाना खान भक्कर से हमें सुन रही हैं। इसके अलावा जी मैसेजेस आप लोगों के और साथ में आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स, तो कॉल्स ले लें क्या, हम कॉल्स लेते हैं, एक कॉल लेते हैं उसके बाद गाने की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, ओके कॉल ड्रॉप हो चुकी है।

0: It's 12:30 p.m. This time. It's 12:30 p.m. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
0: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक.
2: I'm beating on the skin. Her image is
3: damage and dull skin kick
2: out. But you kiye to kick up
3: super white rice collagen beauty cream. Jehme aahin chaur and khubiyon. I kojic acid formulation. Jo jild ke restore kare, unhe jild mein ki lock kare. I chaur and khubiyon. Jild ma fine lines and jhiran ki ghat kar. I wrinkles ki ghat kare. Sirf trim nihan mein. Jild ki badhaye naram, mulayam and bright. Unhe sa garugat super white beauty serum. Jehan ji har katre sa chehre ki mile vadhik khoobsurti. हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.

back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट एंड सुपर वाइट के अलावा जी अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले जो कि सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि आपको बनाते हैं खूबसूरत. तो सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जहाँ जहाँ अवेलेबल नहीं है आज ही अवेलेबल करवाएं. एंड हेल्पलाइन नंबर है जी हैदराबाद के लिए मुमताज हसन खान हैदराबाद से आप इनको रब्ता कर सकते हैं, यानी कि ये हैदराबाद से हैं, आप इनको रब्ता कर सकते हैं. जितने भी हैदराबाद वाले लिसनर्स हमें सुन रहे हैं ठीक है 03702568321 ठीक है जी. ये हैदराबाद वालों के लिए मुमताज हसन खान साहब का नंबर. इसके अलावा जी सखर और लाड़काना वाले जो है इमरान साहब से रब्ता कर सकते हैं. इमरान साहब का नंबर है जी 03147754462 03147754462 ठीक है जी. तो जरूर रब्ता करें और जहाँ जहाँ अवेलेबल नहीं है वहाँ वहाँ अवेलेबल करवाएं. इनकी फेस वॉचेस की बड़ी अच्छी रेंज जो है दस्तियाब है मार्केट में. तो जरूर आपने जो है फेस वॉशेस की रेंज को भी नहीं भूलना और फेस वॉशेस जो कि आप एक अच्छा सा फेस वॉश अगर तलाश करें, जितनी भी खवातीन हैं वो हमेशा एक अच्छा फेस वॉश तलाश कर रही होती है, उनको एक अच्छा फेस वॉश नहीं मिल रहा होता है. तो इतने सारे अच्छे फेस वॉश जो कि इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं अक्सर कॉस्मेटिक्स वालों ने. सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश एवोकाडो की बहुत सारी खूबियों के साथ ठीक है 100 ml की पैकेजिंग के अंदर मिलते हैं ये तमाम जो जितनी भी फेस वॉशेस हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ठीक है. सुपर वाइट का विटामिन सी ब्राइटनिंग फेस वॉश भी है जिसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. और सुपर वाइट का स्ट्रॉबेरी ब्राइटनिंग फेस वॉश है ये भी आप लोग ले सकते हैं जी. और मेक श्योर जब आप इसकी ब्यूटी क्रीम यूज करें तो सेम ही आप लोगों ने इसका फेस वॉश भी यूज करना है. और जो लोग सुपर वाइट की एंटी ऑयल कंट्रोल फेस वॉश यूज कर रहे हैं यानी कि एंटी टर्मेरिक क्रीम यूज कर रहे हैं तो टर्मेरिक क्रीम के साथ टर्मेरिक फेस वॉश भी आता है इनका, वो ले लेना है. सुपर वाइट का राइस कोलेजन फेस वॉश आता है सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम के साथ, इसको यूज करना है. डबल से ट्रिपल और ट्रिपल से कई ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे आपको ठीक है. और इनकी पेट्रोलियम जली जो है बड़ी कमाल की है, बड़े अच्छे अच्छे फ्लेवर्स में आती है जी. और बहुत अच्छे फ्लेवर्स यानी कि अगर मैं बात करूँ तो इनके बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जी. लेमन के अंदर आपको जो है ये मिल जाती है. इसके अलावा इनकी पेट्रोलियम जेली कोकाओ बटर के फ्लेवर में मिल जाती है, पिंक कलर के फ्लेवर में मिल जाती है. और इतनी कमाल की पैकेजिंग और जार भी इतना कमाल का, आप इसे फॉर्मूला भी तैयार कर सकते हैं हैंड्स एंड फीट्स के लिए. जैसे कि मैंने बताया सुपर वाइट की कोई भी ब्यूटी क्रीम लेके उसकी क्वांटिटी के बराबर सुपर वाइट की पेट्रोलियम जेली है तैयार है आपका हैंड्स एंड फीट फार्मूला. इसको रात को सोने से पहले अप्लाई करें, जहां आपका फेस खूबसूरत हो रहा है वहां पे आप अपनी हैंड्स एंड फीट्स को भी मजीद उतना ही खूबसूरत बनाएं जितना कि आपका फेस है ठीक है जी. इक्वालिटी होनी चाहिए दोनों में. इसी के साथ हम गाना चेंज करने जा रहे हैं एंड द सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल बाय आतिफ असलम एंड द सॉन्ग कॉल्ड हूँ इश्क में. इसको हम सुनेंगे और आगे चलेंगे.

0: ओके जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग और सॉन्ग के साथ साथ आप लोगों की कॉल्स को एंटरटेन करते हैं हम. और नेक्स्ट कॉलर लेने जा रहे हैं, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. जी हेलो.
1: वालेकुम सलाम, मोहम्मद हनीफ शाह वादा कॉलोनी गुड्डू जिला कश्मीर से.
0: अरे वाह मोहम्मद हनीफ शाह भाई, इतने दिनों बाद कॉल कर रहे हैं, किधर से आए हैं?
1: आपको छोड़ा तो नहीं मैं.
0: मुझे छोड़ा तो नहीं ये बात भी है, लेकिन इतने दिनों बाद कॉल की है तो मुझे बताओ कैसे ठीक ठाक.
1: कुछ दिन दूसरों को भी मौका देना चाहिए ना.
0: लेकिन बहुत ज्यादा दिन आपने मौका दे दिया. इतने ज्यादा मौके नहीं देते. अच्छा मुझे, हाँ मुझे बताएं कि कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है. आप सुनाएं
0: जी. अल्हम्दुलिल्लाह. प्रोग्राम सुनते हैं?
1: हाँ बिल्कुल प्रोग्राम सुनते हैं आपका. ये कम से कम कभी कभी नशरियात बस कम आती है, लेकिन प्रोग्राम आपका सुनते हैं.
0: प्रोग्राम मेरा सुनते हैं, ये बात है कि प्रोग्राम सुनते हैं. अच्छा मुझे बताएं कि प्रोग्राम किसके तामुन से है आजकल?
1: प्रोग्राम नाम थोड़ा मुश्किल है, आप एक बार बताएं फिर रिपीट करूंगा.
0: नाम मुश्किल नहीं है, तभी तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ. अगर कोई मुश्किल नाम वाली होती ना तो मैं तो खुद ही नहीं लेकर आती आपके लिए प्रोडक्ट. आप लोगों को याद ही नहीं होती आप क्या मार्केट जाते हैं क्या लेते हैं, इसलिए आसान नाम वाली प्रोडक्ट हम लेकर आए. नाम भी आसान है, रिजल्ट भी कमाल के हैं, और नाम है सुपर वाइट.
1: सुपर वाइट
0: ठीक है, सुपर वाइट नाम है. अब याद कर ले, जहन नशीन कर ले.
1: अभी नशीन करो क्योंकि मैं पहली मरतबा सुन रहा हूँ ये नाम.
0: ओके ठीक है, तो अब सुनते रहें और प्रोडक्ट्स को भी यूज करें, और मैं चाहूंगी कि आप यूज करें.
1: क्योंकि मसरूफियात थी ना, आप जैसा घर में ही आना जाना था सर्टिफिकेट के हवाले से, तो मैं प्रोग्राम नहीं सुन सका, ये इसलिए आज पहली मरतबा सुन रहा हूँ. तो कॉल भी की, प्रोग्राम भी सुन रहा हूँ. सुपर वाइट क्योंकि जहन आजकल बहुत तरफ होता है इंसान का.
0: बस जहन में ये रखें कि रंग चिट्टा करने वाली क्रीम है, चिट्टे को इंग्लिश में वाइट कहते हैं, तो बन गया सुपर वाइट.
1: ठीक है, खरीदेंगे.
0: चलिए ठीक है, जरूर लीजिएगा. और कुछ कहेंगे?
1: बस प्रोग्राम आपका बहुत बहुत बेहतरीन होता है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, लेकिन हमारा दिल बस कहता है कि आपको कॉल करें. प्रोग्राम जब सुनते हैं तो फिर रहा नहीं जाता.
0: प्रोग्राम सुनते हैं तो रहा नहीं जाता, कॉल करनी पड़ती है. बस यही बात तो है ना, यही बात है कि आप लोग खिंचे चले आते हैं. थैंक यू सो मच. और कुछ कहेंगे?
1: बाकी सब सुनने वालों को सलाम, खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे.
0: थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें जी. अल्लाह हाफिज. 03000113488 के ऊपर बहुत सारी लाइव कॉल्स. जिंदगी गुलजार है. बाय सुपर वाइट अक्सा कॉस्मेटिक्स.

चश्मा किशोर कमेंट कर रहे हैं, आपके शो को 2 से 3 दिन से सुन रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा है सवाल टॉपिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा मतलब आपको बात करने के लिए मुद्दा चाहिए, मुद्दे पे बात करना चाहते हैं आप। ओके ठीक है, आप लोगों के लिए हम मुद्दा लेकर आएंगे, यानी कि टॉपिक लेकर आएंगे। मुझे ना शो को डिजाइन करने का वक्त नहीं मिल सका, बट चीजें करते करते बेहतर हो जाती हैं, चीजें करते करते मजीद और खूबसूरत हो जाती हैं। ठीक है तो ये है और मंजिल आपकी यही है, मंजिल का नाम है, जिंदगी गुलजार है। ठीक है मंजिल को खूबसूरत बनाने के लिए इस सफर को स्पॉन्सर कर दिया है जी सुपर वाइट अक्सा कॉस्मेटिक्स वालों ने। ठीक है तो ये बात है, हाफिज यूनस बाबर हमें सुन रहे हैं, जबरदस्त शो लग रहा है इनको, रशीद खोसो हमें सुन रहे हैं, नाइस शो लग रहा है, हैदराबाद से सुन रहे हैं जी, हैदराबाद वाले वाओ। गाना खत्म हो चुका है और गाना हम दूसरा प्ले करेंगे, और दूसरा जो गाना हम प्ले करेंगे वो होगा बहुत अच्छा, और वैसे तो हम सारे गाने ही अच्छे प्ले कर रहे हैं लेकिन हम और भी ज़्यादा अच्छे गाने लगाने की कोशिश करेंगे। और लास्ट मेरे ख्याल से हम जाने की तरफ मूव कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और जाना पड़ेगा हमें क्योंकि जाने का वक्त करीब आता जा रहा है। सो जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स, बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स, जिनके हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बताते जाऊं हैदराबाद वालों के लिए, मुमताज हसन खान साहब से राब्ता कीजिए 0370256831। सखर और लाड़काना वाले डायल कर सकते हैं 0314775442। ठीक है तो ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं जी, इनको आप लोग जो है इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करने के बाद अपने करीबी मार्केट्स और एरियाज में अवेलेबल करवा सकते हैं ये तमाम प्रोडक्ट्स सुपर वाइट के, जिसमें वाइटामिन सी ब्यूटी क्रीम, स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट की फ्रैकल ब्यूटी क्रीम, इसके अलावा सुपर वाइट की ऑयल फ्री एंटी एक्ने क्रीम, और सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम, और सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर, और इनके फेस वॉशेस की बड़ी जबरदस्त रेंज। तो ये तमाम खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट्स, और इसी के साथ ये खूबसूरत सा सफर यही खत्म होता है, कल दोबारा शुरू होने के लिए। ठीक है तो कल सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आरजे, सुनना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा अल्लाह।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics.
4: खान इलाकाई अमन इस्तेकाम ला किरदार जारी रखने वाले अजम ते कायम आहे. केबीके दहशतगर्दी जी बाह में सड़े पयो सुहेल आफरीदी रुगो एहतजाज ए धरणन में मसरूफ है. वफाकी वजीर अमीर मकाम जे प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे ते केबीके में रियासती रिट खत्म थी वई आहे ए हुकूमत नाले का शय ना है. सूबो रहंदो त सियासत भी रहंदी. सूबाई हुकूमत के अवाम जी का बेपरवाह ना है.

पीटीआई जे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा मोहसिन नकवी जी सोहेल आफरीदी ते गालियूं नाकाम बनाने वाले इल्ज़ाम के रद्द करे छो। सलमान अकरम राजा चयो है त गालियुनि जी नाकामी जो जिम्मेवार सोहेल आफरीदी ना है। गालियुनि दौरान केपीके जे पंज जिलन में एमरजेंसी लगाण जो चयो वयो, एमरजेंसी लगाण जी इजाज़त नथा ॾेई सघूं। बुधायो वञे त पीटीआई वफदाडो रखियल मुतालबन में कहिड़ो मुतालबो गैर आइनी या वस खां ॿाहिरि आहे। वफाकी वज़ीर तारिक फज़ुल चौधरी चयो आहे त असांजो पहिरियों मुतालबो टीटीपी ऐं दहशतगर्दनि जी मज़म्मत, ॿियों केपीके में दहशतगर्द ठिकाणनि जो मुकमिल ख़ात्मो ऐं टियों अफ़गानिस्तान बाबति परॾेही पॉलिसीअ ते अमल करणु आहे।

पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वरे वजीर सैद मुराद अली शाह सां गॾु इस्लाम कोट पहुची वियो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन वरे वजीर सां गॾु बख्तावर एयरपोर्ट ते पहुतो। मकामी एमपीएस बिलावल भुट्टो जरदारी वरे वजीर जो आदर भाव कयो। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान जे पहिरें कोयले खुश करण वारे यूनिट जो इफ़्तिताह कंदो। सरकारी कर्जन में 10 सालनि दौरान 340% जे तारीख़ी वाध जो इंकशाफ़। 10 सालनि दौरान सरकारी कर्ज़न में 68,000 अरब रुपियनि जी वाध थी। सरकारी कर्ज़न जो काथो 86,700 अरब ताईं पहुतो। नाणे वारे वज़ारत जी रिपोर्ट मूजिबि हर साल मुसलसिल कर्ज़न में वाध थी रही आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि आप इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल जी करते हैं। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज आपकी खूबसूरती के लिए किस तरह से काम करता है और किस तरह से आपके हंसी से चेहरे को मजीद खूबसूरत और प्यारा बना देगा, ये आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तरीकेकार क्या होने वाले हैं बिल्कुल आप लोगों को बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो स्पेशल प्रोग्राम आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से पहुँचाया जा रहा है। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है एंड डी स्किन फेस वॉश है। ये दोनों प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप जाते हैं तो आपको इजीली मिल जाते हैं, लेकिन अगर नहीं भी मिलते तो उसका हल भी आप लोगों को बताया जाता है कि कैसे आप अवेलेबल करा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का ये थीम जान ही चुके हैं जनाब, के प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है, साथ ही साथ आप लोगों के लिए बहुत कुछ होता है प्रोग्राम के अंदर, यानी कि आप लोगों के फीडबैक्स होते हैं, आप लोगों के लिए गाने होते हैं और जी बिल्कुल आप लोगों के मैसेजेस होते हैं, आप लोगों के साथ गप्पे लगाते हैं, कचहरियों थींदियों आहिन बाबा। ओके तो प्रोग्राम में आप जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं सभी को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। साथ ही साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं, सो लिसनर्स रिसेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब, इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाएंगे और आपको बताएंगे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, ये डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के लिए क्यों और कैसे जरूरी है। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मैं जो ना इतनी ज्यादा वाली बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो वो कुछ तो बात होगी ना कि भाई ये इतनी सारी बातें जो है सिद्रा आप लोगों के साथ शेयर कर रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो होगा डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। तो आप अगर वो कुछ देखना चाहते हैं, खूबसूरतियां हासिल करना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज लाजमी कीजिएगा। मजीद बहुत सारी बातें हैं जो कि डिटेल्स के साथ आप लोगों को पूरे प्रोग्राम में बताई जाएंगे। प्रोग्राम में अगर साथ की बात करें तो साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे 3 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहूंगी, बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारे फन के साथ और बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट के साथ। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे, ऐसे बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल आने का काम करती भाई जानिए सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा एक बहुत ही खूबसूरत से कसीदे के साथ, तो बहुत प्यारा कसीदा हमारी लिस्ट में लाइनअप है, जरा हम ऐसा कर लेते हैं कसीदा सुन लेते हैं, उसके बाद जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो आप लोगों को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। सो आप सुन रहे हैं वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

आप सुन रहे हैं वाइट एशियन जी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है जनाब जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आप लोगों की खूबसूरती का जिम्मा उठाए फिरते हैं जनाब, अगर आप भी जी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे तो आपको भी वो वाले रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो कि भाई उन लोगों को मिल चुके हैं जो जी स्किन ब्यूटी क्रीम ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे पूछिए तो जरा कि उनको कितने प्यारे रिजल्ट्स मिले हैं। जो लोग आपको ये बताए ना कि भाई जी स्किन ब्यूटी क्रीम हमने इस्तेमाल कर लिए, तो बैठकर तसल्ली से उनकी बात सुन ले और आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि भाई सिद्रा जो भी बातें बताती वो बिल्कुल सही बताती है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की खूबसूरती के ऊपर इस तरह से वर्क करती है कि भाई जब आप देखेंगे अपना चेहरा तो खुद ही कहेंगे कि भाई ये तो कमाल धमाल हो गया। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन का फेस वॉश है, ये दोनों प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप किसी भी दुनिया के कोने से हमें सुन रहे हैं, किसी भी सिटी से आपका ताल्लुक है, किसी भी गाँव से आपका ताल्लुक है, आप हर अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल करा सकते हैं और इजिली जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए। अचानक अलावा असा प्रोग्राम में थोड़ा अगते वधूं था, प्रोग्राम जी जे सवाल जी तरफ अचूं था, क्योंकि प्रोग्राम का जो टॉपिक होगा ना वो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं। तो आज खैर से फाइनली टीचर्स डे है। हाँ जी बिल्कुल, सुबह से उठे तो देखा हर तरफ टीचर्स डे। बिल्कुल जी, तो मेरी तरफ से तो भाई सब जितने भी टीचर्स हजरात मुझे इस वक्त सुन रहे हैं सबको हैप्पी टीचर्स डे। और टीचर्स का जो रुतबा है ना, टीचर्स हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं। अगर टीचर्स ना होते तो हमारे पास डॉक्टर्स नहीं होते, हमारे पास इंजीनियर्स नहीं होते, हमारे पास कुछ भी नहीं होता समझ लीजिए। तो टीचर्स का हमारी लाइफ के अंदर बहुत अहम और बहुत अच्छा वाला रोल है और उसे हमेशा याद करना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ अगर आज के प्रोग्राम में सवाल की बात करें तो मेरा आप लोगों से जो सवाल होने वाला है वो हम जरा आज अपने उस्तादों को याद करेंगे और वो कैसे, क्योंकि आप मुझे ये बताएं कि आपके लाइफ में कोई ऐसा टीचर रहा हो जिसने आपसे कुछ कहा हो और आपको वो आज तक याद है, क्योंकि काफी टाइम गुजर चुका आपको अपने स्कूल छोड़े कॉलेजेस छोड़े। तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कोई बात जो कि आपको अपने टीचर की याद रह चुकी है कि भाई फला टीचर ने मुझे ये बोला था और ये बात जो है ना वो काफी मोटिवेशनल आपकी लाइफ में साबित हुई है और आप जब भी उसी बात को याद करते हैं तो आपके चेहरे पर स्मेल आ जाती है और आप अच्छा सा फील करते हैं। तो आप मुझे बताएं ऐसी कोई बात जो कि आपको, हाँ जी आपके टीचर ने बोली थी और वो आपको बड़ी अच्छी लगी थी। उन्हें कहा अलावा जेको वास वगैरह आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं, फेसबुक पर सुनने वाले हैं, तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, अगर आप सर्च करेंगे आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। पेज पर आइए, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो इतने प्यारे खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं तो अपना फीडबैक हमारे साथ लाजमी शेयर किया करें। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज आपकी स्किन के लिए क्यों जरूरी है ये मैं आपको पूरे प्रोग्राम में बताती रहूंगी। तो आप हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहिए ताकि हम बहुत सारे लोगों को बता पाए कि आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आप भी अपने चेहरे को चमका सकते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के यूज से। और साथ ही साथ मुझे बताइए आपका कोई ऐसा टीचर जिसने आपको कोई ऐसा वर्ड बोला हो, ऐसा कोई जुमला बोला हो जो अभी तक आपको याद है, वो ऐसा मोटिवेशनल की तरह आपकी जिंदगी में काम किया उस वर्ड ने, उस जुमले ने, ये आप मेरे साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जनाब, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को हम कहाँ से अवेलेबल करा सकते हैं या फिर कैसे अवेलेबल करा सकते हैं, कई मरतबा तो ये वाला सीन हो जाता है कि आप लोग नंबर जो है ना वो नोट नहीं कर पाते हैं और कहते हैं कि भाई आप नंबर हमें बताते रहें प्रोग्राम में ताकि हम नोट कर सकें, और नंबर के ऊपर रब्ता करके हम भी अपने करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराएं, तो बिल्कुल आप अवेलेबल करा सकते हैं। अभी आपको नंबर बताने लगी उनके ऊपर जरा गौर कीजिएगा, नंबर को जल्दी जल्दी से अपने करीबी जनरल स्टोर के ऊपर डायल करके अवेलेबल कराइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन के फेस वॉश को। उन्हें कहा अलावा नंबर की तरफ अचू था नंबर आए जनाब, ओके जी पहला नंबर है 03-27-38-43-09, बुरी 300 है 73-84-309, आई बी ओ नंबर आहे 03-12-50-25-907, बुरी 312 50-25-970। ही बई नंबर्स आहिनि जेके तव्हांजी आसानी जे लाइ आहिनि, तव्हां हिन नंबर से राबतो करे सघो था, कॉल करे सघो था या वरी
मैसेज करे सगो था तारिक भाई तो आगे रिस्पांस नींदो बाबा इन तारिक भाई जेको अन वेठो आ तवां जे लाए त केडी मल असन लिसनर्स के कॉल कन था आई किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल करा लाजमी थी चुको आ है सो तमा भी अवेलेबल करायो टेक्स्ट मैसेज कयो या वरी कॉल करे सगो था सो अवेलेबल कराइंदा रहो आई इस्तेमाल कंदा रहो आई सुना थींदा रहो और जी पोस्ट को लाइक और शेयर रखा करें ठीक है शेयर करने से भाई मोहब्बतें बढ़ती है शेयरिंग इज केयरिंग होती है उनके अलावा अचूं तो तमाम जी कमेंट्स की तरफ रहते जैन अली हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले कहते हैं कि मुझसे मत पूछो कि उस शख्स में क्या अच्छा है अच्छे अच्छों से मुझे मेरा बुरा अच्छा है हाय अल्लाह क्या बात है कहते हैं उसे कहना दिल की चाहत हो तुम वरना बाखुदा इन आंखों ने बहुत हसीन लोग देखे या तो हकीकत कहते हैं फकत एक का होने में ही हुस्ने बंदगी है बिल्कुल जी बिल्कुल तमाम सही आए हो बिल्कुल सही आए हो नजर मोहम्मद भटिया में सुन रही है वालेकुम अस्सलाम कहते कैसी हैं सिस्टर मैं ठीक हूँ प्यारे भाई आप हमें मटियारी से सुन रहे हैं सिस्टर आप सिर्फ निगत नाज का गाना चलाती हो शाजिया मारवी के सॉन्ग भी चलाओ ना हाजिर हाजिर मैं कोशिश कदम शाजिया मारवी जा गाना भी तांके बुधराइंदा सी और फैसल अहमदानी हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम फैसल अहमदानी लिखते हैं सोच समझ कर रखना मोहब्बत की कश्ती में कदम जब ये चलती है किनारा नहीं मिलता जब ये डूबती है तो सहारा भी नहीं मिलता या तो हकीकत आए बिल्कुल और जैन कहते हैं कि तीनों सामने बिठा के तस्वीर बनावा ये सॉन्ग लगा दो मारे साथ ही बिल्कुल ना गाने के हलाए बैठे नाज़ी परवा कहती है अस्सलाम वालेकुम गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे आप ही अल्लाह ब्लेस यू द बेस्ट विशेस आई होप यू आर फाइन यस मैं ठीक हूं आप बताएं कैसी हैं और बरकत रमादानी जमाली बलोच में सुन रही हैं वालेकुम अस्सलाम जेकब अब्बासी आपने मुझे ज्वाइन किया है नहीं भी आपने मुझे बलूचिस्तान से ज्वाइन किया है बहुत शुक्रिया प्यारे भाई और फैसल में ठीक हूँ आप बताएं कैसे हैं ठीक ठाक है मजे में है और तारिक भाई हमारे साथ हैं तारिक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई और आपको भी वेलकम हो गया तारिक भाई लिखते हैं कि वसीम ट्रेडर्स कंडियारो वसीम भाई हमारे बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम पे बहुत मेहनत कर रहे हैं और कंडियारो सिटी में हर शॉप पर अवेलेबल कराई हुई है उन्होंने क्या कहने भाई वसीम भाई की मेहनत को सलाम और यहाँ पर आप सब लोग जितनी भी डी स्किन की टीम है जितने भी वाइट एश की टीम है वो सारे भाई अपनी मेहनत कर रहे आप सब लोगों को इस मेहनत का फल मिलेगा और अल्लाह पाक आपके रोजी में बहुत बरकत देगा इंशाल्लाह भाई

क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना आप लोगों को नेचुरली खूबसूरत बना रही है, यानी कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आप बताएं तो क्या कर रहे हैं, क्योंकि इतना खूबसूरत निखार आपके चेहरे पर आ चुका है, आपके चेहरे की स्किन टाइट हो चुकी है, आपके चेहरे पर रिंकल्स, फ्रेकल्स, क्रेकल ये सब चीजें खत्म हो चुकी है, आप दिन ब दिन ग्लो करते जा रहे हैं, ये कमाल बताइएगा उनको डी स्किन ब्यूटी क्रीम का है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में डी स्किन का फेस वॉश भी ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि फायदे ही फायदे है मेरी जान, ट्राई तो करके देखिए। और जनाब पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर ओके जी अब्बासी भाई को कहते हैं कि हर लिखा है, अच्छा आपने लिखा है कि हर कोई दुनिया को बदलने का सोचता है लेकिन कोई खुद को बदलने का नहीं सोचता, हम उंगली दूसरों पर उठाते हैं, मुआशरा खराब है, लोग अच्छे नहीं, हालात बदलने चाहिए मगर आईने में खुद को देखने से डरते हैं। यह गाल तो मां हमेशा चवंदी आहियां त बाबा दुनिया के तमाम बाद में चेंज कयो, तब्दील कयो, फिर हम पाण खे त तब्दील करे ॾिसो, छो त अगर आप अपने अंदर चेंज लाएंगे तो समझ लीजिए दुनिया ही अच्छी हो गई है। बाबू खान अबड़ू हमारे साथ कहते हैं आपका शो शौक से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया बाबू खान अबड़ू। और किशोर भाई कहते हैं कि आयो आयो किशोर आयो, अल्लाह जाए आपको देखकर पता नहीं क्यों मुझे हंसी आ जाती है। चलिए आप पोस्ट पर बने रहिए, यहाँ पर टाइम हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आ जाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, अपनी ना सीट पर बैठी रहिए और मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। White Asian D Skin Beauty Show is sponsored किया जा रहा है D Skin Beauty Products के तावन से, तो D Skin Beauty Products का यूज कीजिए और आप भी खूबसूरत हो जाइए, ठीक है।

0: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में.
0: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: It's time to commercial break.

0: हा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिंमें आहिनि चांवरनि जूं खूब

0: ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐं चामरन जो खूबियो जल्द मा फाइन लाइंस ऐं झुरन के घट कन ऐं रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिन दिहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जै जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

होती ना वो थोड़ा सा वाकई ऐसा होता है कि वो थोड़ा परेशान होते हैं कि भाई हमने कौन सा प्रोडक्ट लगाने हमें खुद ही समझ नहीं आती। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम भाई साहब ये ऑल स्किन टाइप के लिए। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, डार्क ड्राई हो या फिर कॉम्बिनेशन टाइप हो, तो हर स्किन के ऊपर आराम से आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जो एहसास होगा वो इतना नरम और खूबसूरत एहसास होगा कि आपकी स्किन के रूटीन जो है ना वो मजीद खास हो जाएगी, आपकी स्किन के रूटीन आसान हो जाएगी और आपकी स्किन जो है वो साफ सुथरी और अच्छी तरह से राइज भी हो जाएगी। आपके जल्द की जो ताजगी होती है जनाब वो बरकरार रहती है और आपके चेहरे पर जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो आपके चेहरे पर डार्क सर्कल्स हों, क्रेकल्स हों, रिंकल्स हों या फिर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा इस तरह के निशानात आ जाते हैं जिनको रिमूव करना आपको लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल खुद कह रहा है आई एम पॉसिबल। और ये बिल्कुल पॉसिबल है जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के यूज के फौरन बाद ही आपके चेहरे की स्किन ग्लो करेगी, शाइन करेगी और नेचुरली आपको महसूस होगा कि भाई आपका चेहरा है ना वो खूबसूरत हो चुका है। तो आप मर्द हज़रात ख़वातीन हर कोई इस्तेमाल करती रहिए और जो नंबर्स आपको बता रही हूँ प्रोग्राम के अंदर उसके ऊपर राबता करती रहिए और इस्तेमाल करते रहिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश। अच्छा, फेस वॉश की क्या क्वालिटीज है उसके बारे में बिल्कुल आप लोगों के साथ बात करेंगे, उसके बारे में भी बिल्कुल आप लोगों को बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपके मुझे लग रहा है कि कॉमेंट्स जो है ना वो ऊपर चले जाएंगे, तो मैं जरा कुछ आप लोगों के कॉमेंट्स रीड कर लेती हूँ। जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है, हमारी पोस्ट को आप जरा लाइक और शेयर करते जाइए। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है वफा शहजादो मक्सी भाई लाड़काना से, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्रोग्राम लाजवाब आए, थैंक यू वेरी मच सोना भाई। और दर्दे दिल लिखती हैं कि हर वो टूटना जो आपको अल्लाह की तरफ ले जाए दर हकीकत जुड़ना होता है, अगर चाह वो आपको कितना ही तकलीफ दे, जो तकलीफ अल्लाह से जुड़ने का सबब बने वो तकलीफ तकलीफ नहीं दर हकीकत राहत होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। और किशोर भाई कहते हैं कि अदा मुखे त उस्तादन रुगो कुटकी डिनिया आ कहके याद कयो सच्ची बुधायो कोई अड़ो उस्ताद न गुजरा तव्हांजी जिंदगी मां जेको भई तव्हांखे थोड़ो मोटिवेशन वारो को जुमलो चई वियो हुजे ऐं तव्हां हुनखे यादि करे अॼु ॾींहं ताईं थोरो ख़ुशि थींदा हुजो त बाबा वाह वाह ही फलाणो उस्ताद मुंहिंजी ज़िंदगी में कमाल जो हुयो। और चाचा ख़ालिद कहते हैं कि हा मां उर्दू मीडियम मां में पढ़ा था और हाई स्कूल का एक टीचर कहता था हवा चला नहीं कवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया, ये टॉपिक आंसर। अच्छा, ये जुमला आपको याद रह गया, सही बात है ये भाई। लोग जो दूसरों की कॉपी करते हैं वो दरअसल अपनी पहचान भी खो देते हैं। और मोहम्मद जमान हमारे साथ ही वेलकम कहते हैं प्यारे भाई आपको भी। और चाचा कहते हैं झंडू मरी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले थी या न? बिल्कुल जी मिले थी, वही कहते झंडू मरी वारा बुधाइंदा असांगे झंडू मरी वारा दियो तो हाल अवाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवाज एरिया में मिले थी। और अब्दुल करीम गांगरू हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम भा मां ठीक है बुधाई कि आयो ठीक ठाक आयो। और आबिद अली हमारे साथ ही प्यारे भाई आबिद आ चुके हैं, कहते हैं हम आपको बेरिया रोड से सुन रहे हैं, कहते योर वॉइस इज अमेजिंग सिस्टर, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई, आपको वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं। और आप भी हमारे प्यारे भाई। और किशोर भाई कहते हैं कि तारिक भाई रोज वेठो हूंदो आहे सुम्हे नथो छा, तारिक भाई रात जो सुम्हंदो आहे ॾींहं जो पंहिंजो कमु कंदो आहे, सो तारिक भाई खे तव्हां ॾींहं जो कॉल करे सघो था पर राति जो बि करे सघो था पर थोरो सवेर जो कजो, लेट सां त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे हर को सुम्ही पवंदो आहे, सो तव्हांखे ॾींहुं मिलियल आहे न सॼो ॾींहं में पंहिंजा सभु कम जेके आहिनि उहे मुकाए छॾींदा कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो, ठीकु आहे जी, तव्हां बि इस्तेमाल करे सघो ऐं तव्हां बि सुहिणा थी सघो। अच्छा, इहे मौजूद वाजिद सिंधी अदि कीअं आहियो मीरपुर ख़ासि खां तव्हां सुनो प्रोग्राम ॿुधो पिया अदि सफ़ा भली आहे तव्हांजो हाल अहिवाल कीअं आहियो ठीकु ठाक आहियो मज़े में आहियो। इक़बाल लाशारीअ में सुन रहे हैं जी मीरपुर ख़ासि, इक़बाल भाई आपको भी वेलकम इन खुशामदीद। अब्दुल गफ़ार भाई वालेकुम अस्सलाम सलामत रहें जी, आप भी मेलसी से आप हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद मेलसी में भी मिल रही है आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम। दानिश खान हमें सुन रहे हैं कराची नाजमाबाद, मेरा बेटा अब्दुल्ला सलाम कह रहा है, वालेकुम अस्सलाम आप दोनों को वेलकम कहते हैं। अलीशेर बिरोही हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम, प्यारी बहना सिद्रा कैसी है, शो बेहतरीन हो रहा है, अलीशेर बिरोही फ्रॉम मीरपुर बठोरो, हमारे सिटी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल अभी तक नहीं हुई है। अलीशेर आपके बिल्कुल करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल करा
करा देते हैं, ठीक है। आबिद भाई को बोलेंगे या फिर हम तारिक भाई को बोलेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाबू खान अबड़ो कहते हैं मेरा मैसेज रीड नहीं करोगी, कर लिया भाई कर लिया। और फहीम भाई कहते हैं कि आ गई है धीरे धीरे हर अदा बाजार की, लग गई है तुमको भी शायद हवा बाजार की, क्या खरीदा क्या है बेचा आगे इस बाजार में, जाते जाते कुछ हकीकत तो बता बाजार की। ओके फहीम भाई, वालेकुम अस्सलाम, मौलाना सलामत अदा, क्या हाल है आपके, हम भी आ गए बहुत शुक्रिया। अच्छा आबिद भाई कहते हैं कि सिस्टर नौशेरो फिरोज के शॉप, नौशेरो फिरोज की शॉप है अली वारिस जनरल स्टोर, बहुत अच्छी सेल कर रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, प्लीज इसका नाम ले और नौशेरो फिरोज कस्टमर्स अली वारिस जनरल स्टोर पर जाए और वहां डी स्किन ब्यूटी क्रीम ले डिस्काउंट के साथ। क्या बात है भाई, नौशेरो फिरोज वाले लोगों की तो लॉटरी लग गई आपके लिए भाई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम वहां पर मौजूद है और वारिस भाई जो है ना वो आपको डिस्काउंट के साथ देंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। तो आप जाइएगा वारिस जनरल स्टोर पर और वहां से जाकर आप परचेज कीजिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराइए, जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि भाई हमारे एरिया में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, तो नंबर डायल करने से पहले आप एक और भी काम कर लिया करें कि आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर चले जाएं, वहां से पहले मालूमात लें कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो बढ़िया परचेज कीजिए, नहीं अवेलेबल तो डायल करेंगे नंबर जो कि आप लोगों को पूरे प्रोग्राम में बताऊंगे। सो आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

भाई ये गर्मी को क्या हुआ, ये जा ही नहीं रही है। अच्छा रात का टाइम जो है वो तो थोड़ा सही है, रात के टाइम तो सही थोड़ा सा मौसम हो जाता है, लेकिन दिन में तो वही गर्मी है ना, ये दिन की गर्मी का क्या होगा, ये कब जाएगी। भाई अब आप देख लीजिए कितनी ज्यादा गर्मियां चल रही है, पहले ऐसा होता था ना कि भाई जितनी गर्मियां होती थी उतनी सर्दियां आती थी, लेकिन अब तो ऐसा है कि खाली मुझे लगता है कि 2 महीने ज्यादा से ज्यादा 2 महीने आ रहे हैं सर्दी के। लेकिन ऐसा वाला सीन है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई कोई ऐसा प्रोडक्ट तो हम को जरा बता दीजिए जो हम गर्मियों में भी लगा सके और सर्दियों में भी लगा सके, क्योंकि ज्यादातर तो यहाँ पर पाकिस्तान में गर्मियां ही होती है, तो आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। ये हर सीजन में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है और हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज करने के बारे में, तो लाजमी जाइएगा, परचेज कीजिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये बात तो जरा याद ही रखिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि इसे डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है जो कि आपकी स्किन से रिलेटेड फार्मूले बनाते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश, ये दोनों चीजें आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की तो ये बात है जनाब की ये 2-in-1 फार्मूला है, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

मेरे साथ है रशीद खोसो भाई, आप हमें सुन रहे हैं जी हैदराबाद से। हैदराबाद से आप कहते हैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपको भी वेलकम हो गया। और हमारे साथ है फैसल अहमदानी, लिखते हैं कि हम तो समझे थे कि एक जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रग जान में उतर जाएगा। हाय हाय क्या बात है, क्या बात है। और शौकत अली कहते हैं एक्सलेंट शो, शौकत अली फुलपोट्रो हमारे साथ मौजूद है, क्या बात है भाई को वेलकम कहते हैं। और किशोर भाई कहते हैं कि अदा अज वीह सालन का पोए मुझी आईडी जो नालो चेंज कयो आ, स्मार्ट किशोर मां चेंज करे किशोर कुमार रखियो आई, यो तां भलो कम कयो, तवां जो नाले गाला छ मानु चढ़न पया, हाने दिसो वा चढ़न जाता ही बरकरार रहे या फिर थोड़ो सुधार हो सके तो सो अच्छा लगा, चेंजिंग लाइफ के अंदर जरूर।

सुना, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना सुन रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं बताएं तो पता तो चले हमें कि ये जो इतने खूबसूरत लोग हैं ये भी टी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ ही यहाँ पर फहीम भाई, आपने लिंक शेयर कर दिए, ओके आई ट्राई, आपका गाना लगा देंगे। आबिद भाई लिखते हैं कि नौशेरो फिरोज के कस्टमर से गुजारिश है कि अली वारिस जनरल स्टोर रेशम गली पर जाएं और वहां से टी स्किन ब्यूटी क्रीम डिस्काउंट के साथ लें। क्या बात है भाई, सुन लीजिए, नौशेरो फिरोज वाले लोग तो भाई भागते हुए जाएंगे टी स्किन ब्यूटी क्रीम लेने। अच्छा आबिद भाई, अब आपने ये बोल दिया है कि भाई नौशेरो फिरोज वालों को डिस्काउंट के साथ टी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलेगी, तो अब सारे लोग आ जाएंगे कि भाई असा करो डो कहो सी, हमें भी डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो फिर आप बता देंगे, सबको देंगे डिस्काउंट।

हा इहा शइ मूं बि ॾिठी हुई हिन प्रोग्राम में माण्हू जो पेट नथो भरिजी वरी ॿियनि में बि वञनि उते बि साॻो अशर आहे अलाह सां हिदायत ॾियनि माण्हुनि खे ई बाबा शिदा नारायण

0: अच्छा ऐसे नारवाणी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम ओ माय फेवरेट आरजे मैडम मुस्कान जी की खेसिया मैं भी आ गया वेलकम तो बनता है उर्दुओं से नहीं दिल से
1: जी बिल्कुल
0: आज आपको दिल से वेलकम कहते हैं खालिद नोटकानी हमारे साथ हैं बेहतरीन प्रोग्राम खालिद नोटकानी मातली से आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं जन आपको वेलकम कहते हैं अकबर अली अकबर बिरोही भाई हमारे साथ सकरन से आप हमारे शो को ज्वाइन कर चुके हैं कहते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा है गुड थैंक यू प्यारे भाई भाई आप लोगों ने झंडो मरी बोल बोल के इतना उनको बिजार कर दिया मुझे लग रहा है कि अब वो प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं कर रहे झंडो मरी वाले भाई आ जाएं प्रोग्राम में बताएं इनको कि आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अच्छा जी खास के लिए हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं हेलो जवार मोहम्मद बचल शंबानी भाई वालेकुम अस्सलाम आपको भी खुश आमदीद और खालिद बोजदार हमारे साथ थे खालिद बोजदार और माजिद बोजदार दोनों को वेलकम कहते हैं मीर मुमताज अली जतोई भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं अदीस इद्रा मुस्कान भेण खुश आई हो सफ़त आजी भेण खुश आ प्रोग्राम जो था माशाल्लाह बेहतरीन आहे तव्हांजो जबरदस्त प्रोग्राम थैंक यू मोहब्बत आनी तव्हांजो तव्हांखे प्रोग्राम पसंदि अची पियो अच्छा जी खास के लिए कहते हैं कि कहें के गुलाब जा गुल दियण मोहब्बत नाए हुंदी उनके गुलाब जिया पाक रखण मोहब्बत हुंदी आए वाह वाह वाह वाह जबरदस्त उनके डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी ना गिफ्ट ॾेई छॾियो यहाँ बि मोहब्बत क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आके जो पीढ़ी प्यारे हैं ना आपकी लाइफ में पसंदीदा इंसान तो उसको आप गिफ्ट भी दे सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश आप देख लीजिए आपका जो वो है ना वो कौन सा प्रोडक्ट लगाता है दोनों प्रोडक्ट लगाने वाला है या फिर खाली फेस वॉश लगाने वाला है क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स आप जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं हर स्किन के मुताबिक हर कोई लगा सकता है मर्द हजरात खवातीन सारे लगाइए और खूबसूरत हो जाइए किशोर भाई कहते हैं कि अदा 10 अक्टूबर को मैं लाड़काना आऊंगा 10 डब्बी लूंगा वायदो अल्लाह एड़ा वायदा करे चलिंदा आयो न चलो सही आ विराए जो वनी पोड़े कराची में जारे तारे भाभी खेड जो अदन खेड जो अलीशा कहती है कि कौन कहता है आंखों का खौफ नहीं होता वो घूरता है तो मैं अपना फैसला बदल लेती हूँ अखिन जोड़ो रो बूंदो आला जाई तो अलीशेर कहते हैं कि सिस्टर आज मेरे लिए एक सॉन्ग प्ले करो गुलाम हुसैन उबराणी का मां बिल्कुल कोशिश कयां थी भात आंजी फरमाइश हलाए छॾींदा ऐं मोहबत हुए तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया दर दे दिल खुशानी अली गुलाम केरियो भाई बेरिया रोड खां असांखे ज्वाइन कयो आहे बाजू मोहबतूं भाउ खे चवंदा भली करे आया हिते तव्हां सभु वेठा हुजो आबिद भाई कहते हैं कि डील डन मेरी ऑल मार्केट में डिस्प्ले है डी इज अवेलेबल फुल डिस्काउंट के साथ मिलेगी भाई क्या बात है आबिद भाई ने बोल दिया चलिए अब जाइए डी स्किन प्यूरी क्रीम डिस्काउंट के साथ लीजिए ये तो भाई मजे हो गए कमाल धमाल चलो यहाँ पर बैठे रहिए टाइम हुआ है न्यूज ब्रेक का उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं आपने कहीं नहीं जाना हमारे साथ मौजूद रहिए मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो
2: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics.
6: इस्लामाबाद के थर वारन हवाले कयो थर जी तरक्की ते समूरो मुल्क हैरान आहे इस्लामपुर में थर कोर्ट फेज 3 मनसूबे जो इख़्तिलाफ़ कंदे पर पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त कराची में सियासी यतीमन जी जमायत जी सियासत करे रही आहे सयोनेन वारी सियासत खे सिंध में आणण वारी कोशिश ते कामयाब थियण न ॾींदासीं थर जा ॿार कहा त अव्हां खेन वाधायूं ॾियण बदिरां नफ़रत वारी सियासत कयो था थर जी तरक़ी कुझु माण्हुनि खे हज़म नाहे थी रही असां नफ़रत जी सियासत खे दफ़न करे छॾींदासीं इस्लामाबाद जा माहिर चवंदा हुआ त थर जो कोयलो बेकार आहे सीड़पकारी करणु बेकार आहे हाणे पूरो पाकिस्तान हैरान आहे त थर किथे पहुची वियो आहे इस्लामाबाद वारनि खे चवां थो त हू बि थर जहिड़ी तरक़ीअ ते ध्यानु ॾियनि

हिंदी फोर्सेज पारां बाबुल मंद जे साहिल इलाइक़े ज़ोहाब जो बीहर कंट्रोल हासिल करण जी दावा मुख़्तलिफ़ ऑपरेशन दौरान 1700 खां वधीक बाग़ियुनि खे मारण जी बि दावा कई वई। हिंदी हुकूमत फ़ौज जे तर्जुमान मूजिबि हुसैन जे 1100 बावीह ताक़न ते कार्रवाई कई आहे, जंहिं दौरान 1747 हुसी बाग़ी मारिजी विया आहिनि। मके मुआदे जे स्टेट जब सियासी ऐं दिफ़ाई कमेटी जो इजलास अॼु रियाज़ में थींदो। नायब वज़ीर आज़म साफ़दार ख़्वाजा आसिफ़ फील्ड मार्शल सैदाज़ मुनीर सऊदी अरब पहुतल। इजलास में तुर्की ऐं सऊदी अरब जा परे वज़ीर, दिफ़ा वारा वज़ीर ऐं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ़ शिरकत कंदा। मके दिफ़ाई मुआदे ते अगभराईअ जो जाइज़ो वरितो वेंदो। परे तर्जुमान मूजिबि पाकिस्तान इलाक़ाई अमन ऐं इस्तक़ाम लाइ किरदार जारी रखण वारे अज़म ते क़ाइमु आहे।

0: पेट्रोल के रिलीफ पैकेज हुकूमत जो एहसान ना है, हुकूमत के पेट्रोल वापस वठनी पवंदी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमात।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिपके चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

गाना तो हम इंजॉय करेंगे, लेकिन साथ साथ यहाँ पर आपके पैनल पर काफी सारे मैसेजेस जमा हो चुके हैं, तो उनकी जाने भी आ जाती है। देखिए कौन कौन हमारे साथ है, कहाँ कहाँ से आपने मुझे ज्वाइन किया है और क्या क्या कह रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं तो मुझे मैसेज मिला है जी मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर भाई का, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा, कुछ आयो चाक को सफा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे रहे आयो तवा भी तवा जी फैमिली भी वाह सही वाह वाह सही वाह। महबूब अली हमें सुन रहे हैं मोरो सिटी से, कहते हैं सिस्टर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आप हमेशा गुलाब के फूलों की तरह मुस्कुराती रहो, आपका प्रोग्राम व्हाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स गुड है सिस्टर। न्यू सॉन्ग इब्रारुल हक का प्ले करें। ओके जी, नया गाना लगाते नवा सॉन्ग सुनाते हैं जी आपको, ठीक है। और चाचा खालिद हमारे साथ ही गाना बिल्कुल चाचा आपको सुनाते हैं आपकी पसंद वाला। और हमारी साथी हमारी साइमा मीर, क्या बात है, वालेकुम अस्सलाम। कहती है माँ बाप के बाद जो अल्लाह पाक ने मकाम दिया है वो उस्ताद को दिया है। सलाम मेरे तमाम टीचर्स को जिनसे मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा समझा और आज जिस मकाम पर हूँ, ये सब उनकी मेहनत अजमत का नतीजा है। मेरे तमाम उस्ताद मेरे लिए काबिल एहतराम है, हैप्पी टीचर्स डे। ओके जी ओके, क्या बात है। और दूसरा आपने जो मैसेज किया ना वो मुझे थोड़ा सा आपका मिसिंग पार्ट मैसेज मिला है, लेकिन जितना मिला है वो पढ़ लेते हैं। कहते हैं साइमा मीर और माई बेस्ट स्वीट टीचर सिद्रा मुस्कान को भी सलाम, बहुत सारा प्यार और सलाम उस्तानी जिया अली को भी। टॉपिक बहुत सी बातें सबसे खास के मुझे के बाद आपका मैसेज मिसिंग पार्ट हो चुका है और पता नहीं आप क्या कहना चाह रही थी, वैसे आपको वेलकम कहते हैं। और हमारे साथ हैं जी यहाँ पर आई एम जाकिर हुसैन मरी, बाकिर अली मरी फ्रॉम कोटड़ी, मोहम्मद कबीर शो नाइस है, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई, आपको वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं। ये किसी का खाली मैसेज मुझे मिला है तो जिसका ना पढूं तो समझ जाएगा, ठीक है। वोट मोहम्मद तैयब थेबू का, अभी बोला थेबू, कहते हैं आपका शो वेरी वेरी नाइस है, सलाम आपको जी। वालेकुम अस्सलाम आपको। और हमारे साथ ही हमारी दिल रुबा में सुन रही हैं बेरिया रोड से, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर सिद्रा जान, क्या हाल है आपके, नाइस शो है, मैं रोज आपका शो सुनती हूँ, दिल से आप याद भी नहीं करती हैं, एक भी ऐसा शो नहीं है आपका जो मैंने मिस किया हो। एंड आबिद भाई को सलाम दीजिएगा, मैं भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम खरीद करूंगी अदा आबिद भाई की शॉप से। मास्टर मंजूर को प्ले करना प्यारी, हाजिर हाजिर दिल रुबा, हाणे तवां जो नालो रोज खणंदासीं, ठीक आहे। आईदान जल्दी वनो आबिद भाई का डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करिए जो वो अभी डिस्काउंट में सही यो चाहे जो हमारे साथ यहाँ पर साइमा कहती है और माय बेस्ट स्वीट टीचर, अच्छा ये वही मैसेज है, ये दोबारा से पूरा होकर मुझे मिला है, सही है जी सही है। कहती है टॉपिक सर ने कहा था अपने भाई जैसी जहीन बनो, सबसे खास के मुझ पे मेरा नाम भी टीचर ने रखा था। अल्लाह चलिए जी, फिर आपने अमल किया उस बात पर। और कहती हैं कि प्यारी आरजे प्यारा शो सिद्रो, गांव और सिटी से साइलेंट टीचर सुन रही है आपको, लास्ट में कोई प्यारा सा नगमा उन सब के नाम करना। चलें जी डन हो गया, लाजमी कर देंगे। मकसूद मलहा हमें सुन रहे हैं मेहरापुर से, कहते हैं हेलो सिद्रा मुस्कान, मुझे गाना तो सुनाना, लोटो मुखे आने दे, मुझो मुखे आने दे। अल्लाह यो गानो तो माँ कने हलायो ही ना है प्रोग्राम में। ॾिसो अॼु टाइम मिलियो त बिल्कुलु हलाए वठूं था।

जाने डेज के ब्यूटी क्रीम जो लगाए तो गाल के समझंदा कयो सजन हाने डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए करे सोनो थी वया इन करे हाने ताखे वणे तो सो अगर तहा भी चाहता तबा पता जा सजन भी सोना थी वने तो तहानन के डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो दस जो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम उनन के तमा गिफ्ट भी करे सगो था सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप परचेस कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए मुनासिब सी कीमतों में आपको मिल रही है जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से परचेस कीजिए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

हां जी, मूंखे भी तव्हां ॾाढा वणो था जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो था। ऐं उहे सभु माण्हू वणनि था जेके डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूस करे रहिया आहिनि। ऐं ॿुधायो आहे त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे केतिरो सुठो रिज़ल्ट ॾिनो आहे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां बि ट्राए करे सघो था। सो ट्राए कयो बाबा, ट्राए करण में छा आहे, जॾहिं तव्हां ट्राए कंदा तव्हां ख़बर पवंदी त बाबा सिद्रा एतिरो छो थी ॿुधाए। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप जाइए परचेज कीजिए। मीर मुमताज़ अली जतोई भाई हमें सुन रहे हैं लाड़काना से, आपने मुझे ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा चाचा कहते हैं कि हाँ कल से कराची में भी गर्मी है, सेम सेम लाड़काना, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम कैसे लगाएं, पसीना आएगा नी? नी नहीं आएगा, लेकिन आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए जी, रात के टाइम लगाइए, पसीना आपको नहीं आएगा। और इनका अलावा हाँ किशोर भाई सही कह रहे हैं, सर्दियां आए तो अपने हिसाब का फैशन भी करें भाई, गर्मियों में तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, लेकिन ये है कि भाई दो महीने के लिए सर्दियां आ रही हैं तो क्या एक ऐसा ही फैशन करेंगे? इतनी ज्यादा गर्मियां आ रही है ना, भी क्या बताएं। तो आप गर्मियों में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा सकते हैं। वैसे डी स्किन का फेस वॉश तो क्या ही बात है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अली गुलाम भाई हमें सुन रहे हैं बेरिया रोड से। भाई अली गुलाम भाई, आप आबिद भाई से जाकर ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर लीजिएगा, ठीक है? और फहीम भाई कहते हैं अदा माँ भी मुझे नालो चेंज करे, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो रखा, भले रखो भले रखो। नेकी और पूछ पूछ। अलीशा कहती है कि

और हमारे साथ यहाँ पर दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची कहते हैं ऑल हैप्पी टीचर्स डे. आप सिर्फ हमें किताबी इल्म नहीं देते बल्कि जिंदगी में सही रास्ता चुनना भी सिखाते हैं. आपकी मेहनत रहनुमाई और मोहब्बत हमेशा याद रहेगी. थैंक यू फॉर बीइंग सच अमेजिंग टीचर्स. ओके जी क्या बात है, ये तो बढ़िया हो गया आप हमारे साथ मौजूद हैं. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं बताएं तो मुझे जल्दी से पता तो चले. और यहाँ पर हमारे साथ जी हमारे प्यारे मेहर इरफान सियाल साहब भी मौजूद हैं. गुड आफ्टरनून मैम आर जी. गुड आफ्टरनून टू यू सर. अरे चले आप यहाँ पर बैठे रहिए, प्रोग्राम सुनते रहिए क्योंकि आपका हमारा साथ पूरे पूरे तीन बजे तक का है. टाइम हुआ जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का. सुमाटू गोपांग वालेकुम अस्सलाम, आप हमें कंबर सिटी से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया. और गाने में सबके लगाती हूँ, वापस मुझे आने दें जरा. कमर्शियल लेते हैं और उसके बाद यूं जाकर यूं वापस आते हैं. सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए.

0: It's 2:30 p.m. This time check is brought to you. It's 2:30 p.m. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
2: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक.
3: Like beard on skin, or image like that.
4: Damage? I dull skin kick ayo.
3: Out.
4: But you kiye, to kick upe.
3: Super white dry collagen beauty cream. Jeh me aahin, chaun ranju khubiyo. I kojic acid formulation, jo jind ke restore kare, unhe jind me ki lock kare. I chaun ranju khubiyo, jind ma fine lines and jhuran ki ghat kar. I wrinkles ki ghat kare, sif trim nihan me. Jind ke badaye, naram, mulayam, and bright. जरूरत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले तो अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो.

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर नीह जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: आप सुन रहे हैं

आपने ये क्या सीखा? थाड़ी हण था उडामी वने एड़ो वापरी, ठीक है, आपने ये सीखा। लेकिन यहाँ पर ये एक और बात भी आप लोगों को सिखाने के लिए कि भाई आप डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं, और डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज अगर आप नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, क्योंकि इतनी जो प्यारी प्यारी बातें प्रोग्राम के अंदर आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं कि भाई डे स्किन ब्यूटी क्रीम 2-in-1 फार्मूला है जो आप लोगों को लगाएंगे तो रिजल्ट ऐसे देगी जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। दूसरी बात ये कि डे स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि उन तमाम डॉक्टर्स ने मिलकर डे स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया है जो भाई आप लोगों के स्किन से रिलेटेड आप लोगों के लिए फार्मूले बनाते हैं। और तीसरी बात यह है कि डे स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स हैं, अल्फा आरबुटिन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये इतनी जबरदस्ती सारी सी चीजें ऐड की गई है डे स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो कि डे स्किन ब्यूटी क्रीम के रिजल्ट्स को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देती हैं। और डे स्किन ब्यूटी क्रीम का जो रिजल्ट्स आपको मिलेगा ना वो ऑल स्किन टाइप के लिए, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी हो, ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, तो हर स्किन के ऊपर आप इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप मर्द हंस जाते हैं, चाहे आप खवातीन हैं। क्योंकि कई मरतबा कुछ लोग अगर ये कहते हैं बाजी क्रीमू तो औरतू लगाएंगा, क्रीमू तो माइंड जो कमाए लगाए, बाबा हाँ जमानो इलाही चेंज थी वो है, हाँ तवा वेंदा ॾिसंदा त सेलोन्स में मर्द जेके न वॾो ईअं रज के फेशियल कराईंदा हूंदा आहिनि, ऐं उहे जेके फेशियल्स कराईंदा आहिनि उहे बाबा बसि उन्हनि खे तव्हां छॾे ॾियो, हाणे मां छा उन्हनि जे लाइ चवां, बसि तव्हां घर वेठे पंहिंजे लाइ को अहिड़ो सुटेबल ऐं सही सफ़ा क्लीन प्रोडक्ट पंहिंजे लाइ परचेज़ कयो जंहिंजो नालो आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे फेशियल वारो रिज़ल्ट ॾिए थी, सो अगरि तव्हांखे फेशियल वारो रिज़ल्ट मिली रहियो आहे मुनासिब पैसनि में बिना कंहिं टाइम जे ज़ाया करण जे, त तव्हांखे कहिड़ो बाबा हर्ज आहे, तव्हां छो नथा वठो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फ़ाइदो तव्हांखे इहो मिलंदो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे चेहरे ते चार चंड आणे छॾींदी, तव्हां मर्द हज़रा तव्हां ख़वातीन हर कोई लगाए सघे थो, पंहिंजे चेहरे खे चमकाए सघो था। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां अगरि तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो था त इहो बि यादि रखिजो त डी स्किन जो फेस वॉश बि तव्हांखे लॻाइणो आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो ऐं डी स्किन जो फेस वॉश लॻायो, ठीकु आहे।

मतलब वो बहुत ज्यादा पतला था ऐसा कह सकते हैं। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो समझने के लिए हमें जमाने चाहिए होते हैं। उनके अलावा अगर तहां से अगर मौजूद है तो पोस्ट के बाबा लाइक एंड शेयर करना। हेलो आई मुके बधाई कॉमेंट करिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल किया है। दिल कहती है कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं सीखा। अलीजा भी आपका शो सुन रही है, दोनों परियों को वेलकम कहते हैं। और हमारे साथ हमारे सर महर इरफान सियाल साहब भी कहते हैं ग्रेट हो ग्रेट शो मैम आरजे, वी आर लिसनिंग योर शो फ्रॉम मुजफ्फरगढ़, डी स्किन ब्यूटी क्रीम इज द बेस्ट। यस कोई शक नहीं इस बात में, डी स्किन ब्यूटी क्रीम बाबा कमाल आए। असा पान लगायूं था, असा घर में यूज कई वेंदी आए, एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी बाबा हर तरफ चर्चा आए, हर कोई दीवानो मिले पे असा की डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो असा कंहिं पुछूं था ना बाबा जो अलावाल कड़ी क्रीम लगाई थे चंदा बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई है, एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो एतरो खूबसूरत मानन के रिजल्ट दे पई तो मानन जी दिल चवेंदी है ना वैसे ही तो असा बाबा सुठो प्रोडक्ट लगायो, एई कोई प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट हो जे, एई जेको असा के मुनासिब पैसन में मिलंदो हो जे, तो ये सब क्वालिटीज डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदर मौजूद है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तां भी वठी सको था, तां भी लगाए सको था, तां भी इस्तेमाल करे सको था। भैया अना तक खबर न पई आया पी आया पखी आ चाचा हाँ ऐसा हो सकता है। किशोर भाई कहते हैं कि कुछ मानू भी एड़ा होजन त जा अच्छा हाँ हाँ सही सही

हाँ जी प्यारी दिलरुबा, हमारा प्रोग्राम जो है ना वो डेली सुनती है, ये बात बस अब मेरे जहन में बैठ गई, हम दिलरुबा को याद रखेंगे, हमारे दिल में अब दिलरुबा रहेगी क्योंकि दिलरुबा जो है वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करने जा रही है। तो जल्दी जाइए और परचेज कीजिए, यहाँ पर आप सब लोग भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं। और हमने यहाँ पर गाना लगाया है जी, ये बड़ा प्यारा गाना होने वाला है प्रोग्राम के अंदर, सो आइए सुनते हैं।

मैंने ये कमेंट देख लिया है, चाचा कहते हैं कि फेशियल की तरह लगाएं क्या डी स्किन ब्यूटी क्रीम, न बाबा या गाल तांखे मैं रोज बुधाई दिया है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को जब आप इस्तेमाल करें तो ये एक नाइट क्रीम है, ठीक है। ऐसे ही आप किस तरह से लगाएंगे, आप अपना फेस वॉश करेंगे सबसे पहले डी स्किन फेस वॉश से, उसके बाद अच्छे से चेहरे को सुखा लेने के बाद आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने चेहरे पर उंगलियों की मदद से आराम से लगाना है, प्यार से लगाना है, सॉफ्टली लगा लीजिए और इस तरह लगाएं कि क्रीम आपके चेहरे पर थोड़ी सी नजर आनी चाहिए। मसाज हरगिज नहीं करना, जब आप मसाज करते हैं किसी भी नाइट क्रीम का तो फिर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, सीन थोड़ा बिगड़ जाता है, तो मसाज नहीं करना। अगर मैं फेशियल की बात करूं कि इसके अंदर फेशियल के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, तो आपने फेशियल की तरह हरगिज यूज नहीं करना, ये एक नाइट क्रीम है, तो इसे नाइट क्रीम की तरह ही यूज कीजिएगा, ठीक है। अच्छा साजिद हुसैन सुमरो हमें सुन रहे हैं, शो बहुत अच्छा है आपका, थैंक यू। आप हमें सुन रहे हैं डीआईजी ऑफिस लाड़काना से, शाहिद बबर का गाना सुनाए, आई ट्राई, मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ आपका गाना लग गया तो लगा देंगे। और यासीन खंड हमें सुन रहे हैं, जी कहते मेरी नाइस शो रोजाना की तरह, बहुत शुक्रिया। सलीमुल्लाह फुलपोटरो हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यासीन खंड कहते हैं कि आपकी डी स्किन ब्यूटी क्रीम रोजाना लगाते हैं, जी रोजाना ही लगाइए, रोजाना लगाने के लिए ही है। बताएं आपको रिजल्ट्स कैसे मिले हैं। अच्छा सलीमुल्लाह फुलपोटरो कहते हैं आपका शो सुन रहे हैं खैरपुर मीरत से, ओके जी ओके, थैंक यू, आपको वेलकम कहते हैं। नूर मोहम्मद भुट्टो हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। गुल यासीन नाज हमारे साथ मौजूद है, आप हमारा प्रोग्राम सब दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपको भी वेलकम हो गया। और हमारे साथ हैं जी अली रजा लगारी भाई, थैंक यू सो मच। और हैं जी आबिद बिरोही नौशेरो फिरोज से, आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके, कहते हैं कि आज लूंगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम, बिल्कुल जी आज लीजिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम, परचेज कीजिए, आपको पता चले कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम कितनी कमाल की प्रोडक्ट है।

अच्छा जी, क्या बात है, कितना खूबसूरत गाना हम सुन रहे हैं। और सुमाटो गोपांग लिखते हैं कि रीड कीजिएगा सारा कमेंट आपने जो लिखा है। टॉपिक आंसर कहते हैं कि मेरे लिए मेरे सबसे यादगार टीचर मेरे अबू एजाज हुसैन गोपांग थे। उन्होंने बचपन से मुझे कॉन्फिडेंस दिया और लोगों के सामने बात करना सिखाया। आज मैं जिस कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ उसके पीछे मेरे अबू की तरबियत है। मेरे लिए वो सिर्फ अबू नहीं, मेरे पहले टीचर थे। माई फादर वॉज ऑल्सो गवर्नमेंट टीचर। ओके, क्या बात है, जबरदस्त हो गया ये तो। और उनका अलावा हमारे साथ हैं जी दर्दी दिल, कहती हैं कि टॉपिक चंदा टीचर ना, टीचर ने ना ये बात बोली थी अभी तक मुझे याद है। लिखा है कि उस्ताद की इज्जत करो क्योंकि वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता बल्कि जिंदगी जीने का हुनर भी सिखाता है। ओके, जबरदस्त हो गया। हुबदार अली भाइयों में सुन रही प्रोग्राम तवांजो भल्लो आहे। हुबदार अली शाहपुर चाकड़ का तवां असांखे ज्वाइन कयो आहे। तवांजो मोहब्बतूं आहिनि भाउ, तव्हांखे बि तव्हांजे एरिया जे आस पास करीबी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली वेंदी, डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली वेंदो। सो वञो त लाज़मी परचेज करे अचिजो। भाई अल्लाह करिए आपकी जर्नी जो है वो सेफ रहे, आप सेफली पहुंच जाए जहां आप जा रहे हैं। अब्बासी भाई कहते हैं कि मेहरबानी करके आप भाई इतने सालों से बर्दाश्त ही तो करते आ रहे हैं ना, अब ऐसा है कि बर्दाश्त नहीं होता तो इसलिए हम ब्लॉक कर देते। केतरो आखिर हिकड़ो इंसान बर्दाश्त करे सके तो मुख्य बुधायो, और वो भी बिलावज आकर ब्लॉक ना करें तो फिर उनकी जबानें देखिए कैसी होती हैं, उनके जबानों से पता नहीं कैसे कैसे अल्फाज निकल रहे होते हैं, तो ये सही ऑप्शन है। और वहीद वफाई भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम जी। बिल्कुल, आप भी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है। जेकब अब्बास से आप हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू के साथ आपको वेलकम कहते हैं जी। बिल्कुल, झंडो मरी वारा लाइ कारी वयान लगे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करण वया तो वरी मोटियाई गुण। बाबा मोटी जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचो साण। रमजान भाई भी हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया रमजान भाई, आपको भी वेलकम कहते हैं। अरे भाई किशोर माठ करण जो टाइम गुजरी वो बाबा, हाँ कमेंट पढ़ासी जी माना जा रेजी न वन वही चवंदा न कमेंट डिस पढ़े ही को। और हमारे साथी जी सर महर इरफान सियाल साहब कहते हैं टीचर्स डे सल्यूट टू माय प्राइमरी क्लास टीचर मैम रोजी जोसेफ फ्रॉम सेंट मेरी स्कूल बहावलपुर। क्या बात है, आपको रोजी मैम जो है वो याद है। और ऐसा होता है हमारी लाइफ में, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में हमेशा याद रह जाते हैं, और उनकी बातें उनके पढ़ाने का अंदाज वो सब इतना हमें स्पेशल और खास लगता है कि हम कहते हैं भाई क्या ही बात है। और कहीं ना कहीं मैं जब एक मेरी टीचर है, मतलब थी तो नहीं है, अल्लाह सीना की वॾी हयाती ॾे, सो मां जॾहिं उन्हनि खे ॾिसंदी हुयमि, जॾहिं उन्हनि जो पढ़ाइण जेको वे हूंदो हुयो उनखे ॾिसी मां चवंदी आहियां मां वॾी थी करे टीचर थी जब मैं बड़ी हुई तो फिर मेरा टीचर वाला जो ख्वाब था वो मतलब गुम हो गया कहीं, फिर मैं दूसरी चीजों में लग गई। फिर ऐसा है कि मैं टीचर नहीं बन पाई, लेकिन ये बात है अगर मैं टीचर बनती तो बहुत अच्छी टीचर।

साथ ही हमारी फजली कहती है अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हैप्पी टीचर्स डे आफ्टरनून. माय स्वीट बेस्ट आरजे शहजादी सिस्टर रसिद्रा मुस्कान, कैसी हो डियर? सलाम टू ऑल स्वीट सिस्टर्स को. ओके जी, वालेकुम अस्सलाम सबकी जानिब से आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं हमारी प्यारी फजीला. और हमारे साथ ही जी हमारी साइमा मीर कहती है माशाल्लाह जी, अमल बिना इल्म केड़ो कोई भी अदा खां घट प्यारी, ये शेनीला अली अमेजिंग गाना था. हाँ बिल्कुल, मैंने आज कोशिश करी कि नए नए सिंगर्स को भी मौका दिया जाए प्रोग्राम के अंदर. नए तो नहीं, मतलब ऐसे ऐसे गाने लगाए जो हम तकरीबन कम लगाते हैं. और कहती हैं कि फुल सर्दी में प्ले किया था और आज थोड़ी थोड़ी गर्मी है. यानी पुराने सर्दियों में गानो हलाए से वरी अॼु हलायो. ॾिसो कुझु गाना अहिड़ा आहिनि जेके वाकई मां इलाही टाइम खां पोइ हलाईंदी आहियां. सो बिल्कुल कोशिशि कंदासीं त तव्हांखे सभिनी सिंगर जा गाना ॿुधाईंदा रहूं. और कहती है कि ओ माई टीचर, तुम अपना भी बताओ टॉपिक पर कुझु यादि नसीहत. पहला क्लास कहां पढ़ा था? हा भाई, मेरी जो मतलब पहली पहली टीचर हैं मैम सुग्रा, उनका नाम है, मतलब वो अभी तक है और वो ऐसा समझे कि हमारी फैमिली रिलेटिव्स हैं, तो अभी तक उनसे मेरी मुलाकात होती है. उनसे जब भी मेरी अम्मी पूछती है कि ये कैसी स्टूडेंट थी, मतलब वो बचपन में तो मुझे नहीं था पता कि मैं कैसी थी शुरू शुरू में, तो जब भी उनसे पूछती है तो वो मेरी बहुत ज्यादा तारीफें करती है कि भाई इस जैसा स्टूडेंट मतलब नजीब वालों को मिलता है. मैं बड़ी इंटेलिजेंट थी और मुझे ऐसे मतलब जो है ना सारे स्टूडेंट्स में तकरीबन जो है ना तारीफ करते हैं मेरी. तो ऐसा है कि मैं अच्छा बच्चा था. कटे सटे गाल के अगते वधायूं था. अरे ना खा अलावा जेको आहे पेरी पेरी टीचर मुझी हुआ आहे आई अल्लाह से इनन के हयाती ने इलाही सुठी आ इलाही सुठी. आई उन खा अलावा दिलरुबा कहती है हां जी, आप का बहुत शुक्रिया, लव यू टू. ऐसे खुश रहें और आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना वो लाजमी परचेज कीजिएगा आबिद भाई से जाकर, और आबिद भाई आपको डिस्काउंट के साथ दे देंगे. और इनका अलावा इमरान भाई कहते हैं बाजी ठीक है? जी जी भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं. और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं ये भी बताएं. शहर से गुजरता जी लोटे में अना खीर होयो बाके पर हार जी पयो. यासीन खान कहते हैं कि आप तेरी यादों की जी कोशिश होती है कि प्लेलिस्ट जो है ना वो अच्छी बना दे. और हुबदार अली भाई प्रोग्राम में जी तमा तारीफ का आए, सो थैंक यू सो मच. हाँ भाई चाचू जो आ प्रोग्राम के इंगेज कर रखन है, चाचे के खबर आ बाबा प्रोग्राम में केड़ा कमेंट कदा से तो वे लाजमी पढ़ा वा सफा वे इग्नोर न थींदा. सो चाचो बिल्कुल सब डिटेल से गाल पुछन है सभी के बारे में, तो बाबा ये चीज इनो कड़ो फायदो पवंद हिं लगायों क्रीम या हूँ लगायों चाचे के हाँ सब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में खबर पे ये न चाचा बस हाँ लगा की देरी लगाया था अलग यो को चाचे बुधा है. सो मुख्य बुधा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई अव को चाचा.

चले ये लास्ट में हमने प्यारा सा गजल लगा लिया है गुलबहार खास के लिए, भाई मेरे साथ मौजूद है, वेलकम कहते हैं आपको भी। अच्छा चलें पिरी के वरी ताड़ी सा उडारे वठंदासी खेर जड़ी गाल आए पाजा पाड़ा में तायो और इन का अलावा हिते जेको आ सो मुझे एक ना ये चीज हमेशा मतलब ऐसा लगता है कि मुझे कि याद रखा करे, इंसान जो होता है ना वो डिग्रियों से मुझे लगता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं बनता, उसका अखलाक, उसकी तरबियत, उसकी अच्छी जबान जो होती है ना वो उसको पढ़ा लिखा बनाती है। तो अगर आप ये देखें कि भाई अगले इंसान ने कितनी ज्यादा डिग्रियां हासिल कर ली है वो मैटर नहीं रखती मेरे आगे, बस मुझे ये लगता है कि एक इंसान का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक इंसान के अंदर अखलाक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास अच्छा अखलाक है, अच्छा बोलने का तरीका है, आप लोगों के साथ बैठते हैं तो लोग आपसे जो है वो खौफ नहीं खाते, आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं और उनको ये नहीं होता कि हम फलां बात बोलेंगे तो अगले इंसान को बुरा लग जाएगा, बस वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करें, अच्छा महसूस करें तो आप अच्छे इंसान हैं। और डिग्रियां हासिल करना बुरी बात नहीं होती, हासिल करें लेकिन उसके साथ साथ अखलाक और तरबियत का भी ख्याल रखेंगे वो भी लाजमी होता है।

आप लोगों से इजाजत भी लेने का वक्त आ चुका है। वरी तव मुलाकात जी का मुझे थे पई आप पंज बजे वाले प्रोग्राम में थियण वाली है। पंजो इलाही सारो ख्याल रखना। वेंदे वेंदे बिल्कुल तांगे चई विनासी तबाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा रहो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवाने खूबसूरती में इजाफो आने छे थी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जका है तवाजे खूबसूरती जे मुताबिक ही तैयार थी वई है। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो है सोना सोना थींदा रहो। मिलूं था बाबा पंज बजे वाले प्रोग्राम में। सो पंजो ओ हिनो सारो ख्याल रखना। मोकलानी ना ही सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय लव यू ऑल एंड

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A project by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: Argument mulk mein zabardasti chalaya ja raha hai ke system collapse ho chuka hai. Ke bachche ko top har exam mein top karwa denge. Unka hospitals ka haal hai. अभी अभी देखा हूँ हॉस्पिटल्स को भी हम 100% मुफ्त करवा के आर्मी दुनिया का स्टैंडर्ड्स भी लेकर आएंगे हमें सिर्फ इस्लामाबाद का जिम्मेदारी दे दे वहाँ हम आपको दिखाए देंगे कि थर थर के नौजवान थर के सियासतदान क्या क्या कर सकते हैं हमेशा की तरह अब ये रिवायत बन चुका है कि हमारे थर के बच्चे टॉप करते जब वो टॉप करते हैं तो उनको मुबारकबाद देने के बजाय उनके लिए तालियां बजाने के बजाय अपने नफरत की सियासत कर रही हैं इंशाल्लाह ताला हम इनकी नफरत इस सियासत खत्म करेंगे और थर तरक्की करता रहेगा
3: सिस्टम जी नाकामी थे नवन सूबन वारे मुल्क के समझ का बाहर आए इस्लामाबाद नाकाम थो है तो इस्लामाबाद के थर वारन हवाले कर थर की तरक्की थे समूरो मुल्क हैरान है इस्लाम कोर्ट में थर कोल फेज 3 मनसूबे जो इफ्तिताह कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है तो कराची में सियासी यतीमन की जमायत सहयोगीन की सियासत कर रही है सहयोगीन वाली सियासत के सिंध में आने वाली कोशिश के कामयाब थे डींदी थर जहा बार टॉप कन था इन वाधायू डेण बदरा नफरत वाली सियासत थर की तरक्की कुछ मानुन के हजम नाए थी रही असा नफरत की सियासत के दफन करे छींदी इस्लामाबाद जहा माहिर चवंदा हुआ तो थर जो कोयलो बेकार है सीड़पकारी करण बेकार है हाने पूरो पाकिस्तान हैरान है तो थर किथे पहुंची वो है इस्लामाबाद वारन के चवा तो हू भी थर जड़ी तरक्की ते ध्यान दियन यमनी फोर्सेस पारा बालम बाबल मंदब के साहली इलाके जोहाब जो बीयर कंट्रोल हासिल करण की दावा मुख्य ऑपरेशन दौरान 1700 का वधिक बागिन के मारण की भी दावा कई वही है जिमनी हुकूमत फौज के तर्जुमान मूजिब हुसैन की 1122 थाकन ते कार्रवाई कई है जै दौरान 1747 हुसी बागी मारज वया है मके मुआदे के स्ट्रेटजिक सियासी दिफाई कमेटी जो इजलास अज रियाज में थी नायब वजीर आजम इसहाक डार ख्वाजा आसिफ ए फील्ड मार्शल सैयद आसिम उद्दीन सऊदी अरब पहुतल इजलास में तुर्किया ए सऊदी अरब जहा परदेही वजीर दिफा वारा वजीर ए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ शिरकत कंदा मके दिफाई मुआदे से अगभराई जो जायजो वरतो वो परदेही तर्जुमान मौजूद पाकिस्तान इलाकई अमुन इस्तेकाम लाए किरदार जारी रखने वाले अजम ते कायम है पाकिस्तान जो मुस्तकबिल तब्दील करे सके तो थर जो कोयलो पाकिस्तान की तवानाई सनती जरूरत लाए अहम जरियो बणजी रो है इस्लाम कोर्ट में तकरीब के खिताब कदे वे वजीर सैयद मुराद अली शाह आईपीएस दरामदी कोयले बदरा थर के मुकामी कोयले डां मुंतकिल थी रहा है सिंध हुकूमत फेज 3 मनसूबो 100% पेंजे खर्च ते मुकम्मिल कर रही है थर फेज 3 सा सालानो अटकल 220 मिलियन डॉलर वाधू नाणे की बचत थी केपीके दहशतगर्दी की बाह में सड़े पो सोहेल आफरीदी रुगो एहतजाज ए धरणन में मसरूफ है वफाकी वजीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे है केपीके में रियासती रट खत्म थी वही है हुकूमत नाले का शहर है सूबो रांदो तो सियासत भी रांदी सूबाई हुकूमत के अवाम की का बेपरवाह ना है पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा मोहसिन नकवी की सोहेल आफरीदी से गाल नाकाम बनाने वाले इल्जाम के रद्द कर छो सलमान अकरम राजा है गाल नाकामी जो जिम्मेवार सोहेल आफरीदी ना गाल दौरान केपीके के 5 जिलों में इमरजेंसी लगान जो वो इमरजेंसी लगान की इजाजत ना दे
0: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
4: मीरपुर खास की हो तो आवाज भी मीरपुर खास की है सुनते रहो GAFM 88 मीरपुर खास की आवाज
5: It's time to commercial break.
6: Fine.
5: थोड़ा मी टाइम बनता है।
6: हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
6: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
7: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
6: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
7: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
6: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है सुपर वाइट।

0: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
1: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
0: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
1: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
2: सुपर वाइट।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: ढाडो सुठो
3: जीए FM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

0: स्कोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अरे न खुश्क और बीरोनो की स्किन हर इमेज लाइ छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेहमे आहिन चावरन जो खूबियों आई कोच कैसे फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन नमी के लॉक करे आई चावरन जो खूबियों जल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन संगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं जी एफ एम एम एफ
1: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
4: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: तव्हां खे वाधायूं ॾियण बदिरां नफ़रत वारी सियासत कयो था थर जी तरक़ी कुझु माण्हुनि खे हज़म नाहे थी रही असां नफ़रत जी सियासत खे दफ़न करे छॾींदासीं इस्लामाबाद जा माहिर चवंदा हुआ त थर जो कोयलो बेकार आहे सीड़पकारी करणु बेकार आहे हाणे पूरो पाकिस्तान हैरान आहे त थर किथे पहुची वियो आहे इस्लामाबाद वारनि खे चवां थो त हू बि थर जहिड़ी तरक़ीअ ते ध्यानु ॾियनि यमनी फोर्सिस पारां बालम बाबल मंदब जे साहिली इलाइक़े ज़ोहाब जो ॿीहर कंट्रोल हासिल करण जी दावा मुख़्तलिफ़ ऑपरेशन दौरान 1700 खां वधीक बाघनि खे मारण जी बि दावा कई वई आहे यमनी हुकूमत फ़ौज जे तर्जुमान मूजिबि हुसैन जी 1122 थाकनि ते कार्रवाई कई आहे जंहिं दौरान 1747 हुसी बाघी मारिजी विया आहिनि मके मुआदे जे स्ट्रेटजिक सियासी ऐं दिफ़ाई कमेटीअ जो इजलास अॼु रियाज़ में थींदो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ख़्वाजा आसिफ ऐं फील्ड मार्शल सैद आसिम उदी सऊदी अरब पहुतल इजलास में तुर्किया ऐं सऊदी अरब जा परॾेही वज़ीर दिफ़ा वारा वज़ीर ऐं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ शिरकत कंदा मके दिफ़ाई मुआदे ते अॻभराई जो जाइज़ो वरितो वेंदो परॾेही तर्जुमान मूजिबि पाकिस्तान इलाक़ाई अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ किरदार जारी रखण वारे अज़म ते क़ाइमु आहे थर पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल तब्दील करे सघे थो थर जो कोयलो पाकिस्तान जी तवानाई ऐं सनअती ज़रूरत लाइ अहम ज़रियो बणिजी रहियो आहे इस्लाम कोट में तकरीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त आई पी एस दरामदी कोयले बदिरां थर जे मुक़ामी कोयले ॾांहुं मुंतक़िल थी रहियो आहिनि सिंध हुकूमत फेस 3 मनसूबो 100% पंहिंजे ख़र्च ते मुकमिल करे रही आहे थर फेस 3 सां सालियानो अटिकल $220 million वाधू नाणे जी बचति थींदी केपीके दहशतगर्दी जी बाहि में सड़े पियो सुहेल आफरीदी रुगो एहतजाज ऐं धरणनि में मसरूफ़ आहे वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त केपीके में रियासती रट ख़तम थी वई आहे ऐं हुकूमत नाले का शहर आहे सूबो रांदो त सियासत बि रांदी सूबाई हुकूमत खे अवाम जी का बेपरवाह नाहे पीटीआई जे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा मोहसिन नकवी जी सुहेल आफरीदीअ ते ॻाल्हियूं नाकाम बणाइण वारे इल्ज़ाम खे रद्द करे छॾियो सलमान अकरम राजा चयो आहे त ॻाल्हियुनि जी नाकामी जो ज़िमेवार सुहेल आफरीदी नाहे ॻाल्हियुनि दौरान केपीके जे 5 ज़िलनि में एमरजेंसी लॻाइण जो चयो वियो एमरजेंसी लॻाइण जी इजाज़त नथा ॾेई सघूं इस्लामाबाद जी अदालत जुडिशियल कॉम्प्लेक्स ते हमले केस में पीटीआई
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News
4: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में A product by Aksa Cosmetics Pakistan
6: अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
7: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
8: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
7: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
8: अच्छा, variants सबके different, लेकिन choice सबकी है.
9: Super wild.

ॾिसंदो भई हिकु ई वक़्तु ॿुधो वेंदड़ अवांजो पंहिंजो रेडियो नेटवर्क ऐं उन रेडियो नेटवर्क जे तमामु स्टूडियोज़ जे टावर्स जे भर मां आवाज़ पखीड़े जी परवाज़।

देवस रामू भील असाई बुधे तो भलीकार नजीर वजीर शबीर बुधे पियो आई जुमू भील अवां जो तमाम घणी मेहरबानियों वडा वड़ अवां असाई ज्वाइन कयो नए दुंबाले खां अखियन ते अवां जो मैसेज मिठा माणू भलीकार समयन पहरी कलाक में वने मैसेजेस हुंदा बे कलाक में अवां जो कॉल्स हुंदी तपे बिल्कुल तवा 6 वगे ताई लिखो एमटीआई स्पेस पंजे गोठ शहर जो नालो लिखी पंजे नालो लिखो 8881 नंबर 888 1

सजन सांगीअ जी वांड खां असांखे जॉइन कयो गुलाब गुल। महिरबानी गुलाब गुल, तमामु घणियूं महिरबानी। वेलकम चवंदासीं प्रोग्राम पसंदि करण लाइ। तमामु घणियूं मोहबतूं। ऐं ॻोठ आलम ख़ान जरवार खां मोहम्मद अज़ीज़ जरवार ऐं मोहम्मद इदरीस जरवार ॿुधनि पिया। मिठनि माण्हुनि खे चवंदासीं भलीकार, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। थैंक यू ऐं महिरबानी ऐं मोहबतूं अव्हां जूं। थैंक यू वेरी मच भलीकार। ऐं जनाब असांखे ज्वाइन कयो आहे, जी जी जनाब असांखे ज्वाइन कयो आहे नफ़ीस खत्री, अव्हां असांखे ॿुधी रहिया आहियो मियापोटा तलहार खां। तमामु घणियूं मोहबतूं अव्हां जूं, अव्हांखे बि चवंदासीं वेलकम। ऐं तमामु घणी ख़ुशी थी अव्हां मैसेज पहुता। ऐं जनाब असांखे ज्वाइन कयो आहे, जी जनाब गोविंद ऐं गोविंद कोहली साहब, तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी। तव्हां असांखे ॿुधो पिया मोहबतूं वॾा वॾवां जा, अव्हां असां सां गॾु शामिल आहियो। जी जनाब ॻोठ आहे नोटो खां, थैंक यू वेरी मच। ऐं रामचंद कुमार बि असां गॾु ॿुधे पियो, तमामु घणियूं मोहबतूं, थैंक यू। ऐं जेके जेके महिरबानी ॿुधनि पिया तव्हां सभिनी जा वॾा वॾ। ऐं ॻोठ पाबो वेरो थर पार्कर खां दिलीप कुमार मेघवाड़, नोवल राय, दानिश कुमार ऐं सूरज गुल जो मैसेज पहुतो। शंकर लाल बाबा सां गॾु ॿुधे थो। किरणे कुर्ब हाजी सुल्तान लुंड खां प्यार अली लुंड साहब मैसेज पहुतो। महिरबानी, थैंक यू, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, तमामु घणियूं मोहबतूं। ऐं वॾा वॾवां जा, जिते बि हुजो शाद हुजो, आबाद हुजो। ऐं पुनू ख़ान पंवर खां रुस्तम अली पंवर जो मैसेज पहुतो। रुस्तम, अव्हां जूं बि तमामु घणी महिरबानी। किरोड़े कुर्ब अव्हां जा जो अव्हां सां शामिल। हाजी ग़ुलाम ख़ासकेली लग झंडे मरी खां क़ुर्बान अली ख़ासकेली ॿुधे पियो। अव्हां जूं बि तमामु घणी महिरबानी। ऐं किरोड़े कुर्ब तव्हां जा। ऐं झलूरी खां ख़ालिक लाशारी, तव्हां जूं मोहबतूं जो तव्हां असांखे जॉइन कयो आहे। ऐं ॻोठ ग़ुलाम हुसैन जलालाणी खां नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी साहब ॿुधे पियो। अव्हां जूं तमामु घणी महिरबानी। भलीकार चवंदासीं महबूब नाज़ जलालाणी ऐं मुख्तियार नाज़ जलालाणी, अव्हां जी महिरबानी। आरज़ू असलम जलालाणी, अव्हां जूं मोहबतूं तव्हां लिखियो आहे। असलाम वालेकुम। वालेकुम असलाम।

मोहम्मद अयूब लाशारी साहब ए बाबू लाशारी एक दफो बेहर जामोट फार्म का ज्वाइन कर चुका है सुना साई अवज तमाम घनी मेहरबानी आई अलीपुर मोरी का असा के ज्वाइन कयो है जी जनाब अलीपुर मोरी का असा के याद कयो है खुदा दिनो बजीर अवज तमाम घनी मेहरबानी अदा फौजिया जो कलाम उधराई जो मीठा भा कोशिश करासी।

रेडियो नेटवर्क ऐं शो अवां ॿुधो पिया सिंधड़ीअ जी शाम ऐं सिंधड़ीअ जी शाम में यूनुस पकारी सलाम कहिड़े शहर वाहिण वस्ती ऐं बस्ती खां ॿुधो पिया उनजे लाइ लिखो MTI स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो 88 81 888 1 असांजो नंबर हुन ते मैसेज

0: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Remit, Bank Al Habib, Rishto Bharose Jo.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरंट ऐं सकरंट जो आवाज़
2: GFM 90.8।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

मैसेज जल्दी से टाइप करे वो MGI स्पेस दई पे गोठ शहर के नालो लिखी पैं नालो लिखो 8881 888 से मैसेज जल्दी मोकले छो जल्दी में तो जल्दी जी हाँ हाने जो हाने। गाल करी तो जुल्फन जी मां अणबन अणबन वारन जी तू गाल करी तो जुल्फन जी मां अणबन अणबन वारन जी तू कूक सुनी तो कोयल जी मां पेट बुखायल बारन जी।

जी जनाब वेलकम, उन्होंने मेहरबान के जो हरे हाने मैसेज असंग मोकले रहे हैं, एक दफा बेहर गद मैसेज मोकले हैं। गोठ मोहम्मद तैयब थेबो खां हबीबुल्ला थेबो साहब है, मुझे आवाज अंदाज गुफ्तगु सभी के पसंद किया है, मां तवा जो थोराए तो आया साईं जी लफ्ज तवा लिखा है, मां उन्हें लाइक तो को है पर यह अवां की मोहब्बत है जो तवा एतरो सुठो खुलूस मोहब्बत ए सच्चाई से असा हौसला अफजाई कर एक मैसेज आयो तमाम घणी मेहरबानी थैंक यू।

0: അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഖാസ്കേലി ബദീൻ ഖമദേബ്യ ബലികാരമിഠമാണോ കേരളീയ കുർബത്താഞ്ച.
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज.
2: ज़ादो
1: जीए FM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़.

रंजन कोरी वेर प्रकाश कोरी को ठगा बदे बेभली का रंजन अब्दुल हकीम खास के लिए साहब आवाज मोहब्बत हूँ वहां बताएंगे बदीन का

जी जनाब, सांस है आवाज ये साथ में वाले साथ एक ट्रैक प्ले करे बैठा हूं। न्यूज ब्रेक हूँ, न्यूज ब्रेक का कमर्शियल ब्रेक है, उनका बाकायदगी सामान कॉल्स वी कॉल जे लिए तरीकेकार वही सागे पहले इन ट्रैक के बजंद हल्दी ब्रेक वी उनका जो गाल बुधू ट्रैक जी जनाब जी FM 88 रेडियो नेटवर्क वहां मुखातिब है। प्रोग्राम है सिंधड़ी जी शाम, उन सिंधड़ी जी शाम में यूनिस बकारी जो सलाम।

वारो गानो है पान बुधना सी बाकी फिलहाल मां बिल्कुल हथ को निकडनस मां ब्रेक खा पे वापस वरी इंदस मता समझो त मां हले वे इंशाल्लाह इंशाल्लाह साह टुटण ताई जो साथ जारी रहंदो न्यूज़ ब्रेक ला हलाऊं था अगते वदाऊं था ऐं ही गानो बजंदा हलंदा सी के

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: जबरदस्ती चलाया जा रहा है कि सिस्टम कलैप्स हो चुका है तो आप सुबह बनाए. वैसे तो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता लेकिन मान लो तो इस्लामाबाद को थरपारकर वालों को हवाला कर दे, हम उसको ठीक कर देंगे. वहां के बच्चे को टॉप हर एग्जाम में टॉप करवा देंगे. उनका हॉस्पिटल्स का हाल हमने अभी अभी देखा, उनका हॉस्पिटल्स को भी हम 100% मुफ्त करवा के आर्मी दुनिया के स्टैंडर्ड्स पे लेकर आएंगे. हमें सिर्फ इस्लामाबाद का जिम्मेदारी दे दे, वहां हम आपको दिखा देंगे कि थर थर के नौजवान, थर के सियासतदान क्या क्या कर सकते हैं. हमेशा की तरह अब ये रिवायत बन चुका है कि हमारे थर के बच्चे टॉप करते हैं. जब वो टॉप करते हैं तो उनको मुबारकबाद देने के बजाय उनके लिए तालियां बजाने के बजाय अपने नफरत की सियासत कर रहे हैं. इंशाल्लाह ताला हम इनकी नफरत की सियासत दफन करेंगे और थर तरक्की करता रहेगा.
5: सिस्टम जी नाकामी थे नवन सूबन वारो मंतक समझ का बाहर है. इस्लामाबाद नाकाम थियो है त इस्लामाबाद के थर वारन हवाले कयो. थर जी तरक्की थे समूरो मुल्क हैरान है. इस्लाम कोर्ट में थरकोट फेज 3 मंसूबे जो इफ्तिताह कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयो है त कराची में सियासी यतीमन जी जमात सहूनियन जी सियासत करे रही है. सहूनियन वारी सियासत के सिंध में आणण वारी कोशिश के कामयाब थियण न डींदासीं. थर जा बार टॉप कन था त अवां खे वाधायूं ॾियण बदिरां नफ़रत वारी सियासत कयो था. थर जी तरक़ी कुझु माण्हुनि खे हज़म नाहे थी रही. असां नफ़रत जी सियासत खे दफ़न करे छॾींदासीं. इस्लामाबाद जा माहिर चवंदा हुआ त थर जो कोयलो बेकार आहे, सीड़पकारी करणु बेकार आहे. हाणे पूरो पाकिस्तान हैरान आहे त थर किथे पहुची वियो आहे. इस्लामाबाद वारनि खे चवां थो त हू बि थर जहिड़ी तरक़ीअ ते ध्यानु ॾियनि.

दहशतगर्दी के एक साजिश तहत बढ़ो वो है गलत पॉलिसी सब मुल्क विरायजी रो है। लॉन्ग मार्च के खिताब कंदे खैबर पख्तूनख्वा के वे वजीर सोहेल आफरीदी तो अवाम से गड बीहण बेवकूफ़ी है तो मैं बेवकूफ़ आया। हुकुमरान वट अञा भी वक्त है अवाम बाहर निकतो तो केर भी कंट्रोल कर नहीं सकता।

थर पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल तब्दील करे सघे थो। थर जो कोयलो पाकिस्तान जी तवानाई ऐं सनअती ज़रूरत लाइ अहम ज़रियो बणिजी रहियो आहे। इस्लाम कोर्ट में तकरीब खे ख़िताब कंदे सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त आई पी पीस दरामंदी कोयले बदिरां थर जी मक़ामी कोयले ॾांहुं मुंतक़िल थी रहियूं आहिनि। सिंध हुकूमत फेस थ्री मनसूबो 100% पंहिंजे ख़र्च ते मुकमल करे रही आहे। थर फेस थ्री सां सालियानो अटिकल 220 मिलियन डॉलर्स वाधू नाणे जी बचति थींदी।

पेट्रोल ते रिलीफ पैकेज हुकूमत जो एहसान ना है, हुकूमत के पेट्रोल लेवी वापस वठनी पवंदी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान पेट्रोलियम लेवी वाले मामले ते 7 अक्टूबर ते इंदड़ मरहले जो ऐलान कयो वेंदो। हुकूमत के पेट्रोलियम लेवी खत्म करनी पवंदी।

पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खिलाफ़ शागिर्दनि जे एहतजाज जो नोटिस वरितो। सिंध हुकूमत जो वफ़द हैदराबाद में SPSC खिलाफ़ शागिर्दनि जे एहतजाजी कैंप ते पहुची वियो। आजिज़ तामरा, हैदराबाद जो मेयर काशिफ शोरो ऐं ॿियनि जूं शागिर्दनि सां ॻाल्हियूं। शागिर्दनि जो मौक़िफ़ आहे त साल 2024 वरी गॾियल चटाभेटी जी इम्तिहानी नतीजनि में पंहिंजा नवाज़ी कई वई। इम्तिहानी नतीजनि में बेज़ाब्तगियुनि जी जांच कराए शफ़ाफ़ियत खे यकीनी बणायो वञे।

फैजगंज वेझो कार ऐं तकरार तां झेड़ो औरत कुहाड़ीअ जा वार करे क़तल ॻोठ रांझू ख़ासि किले बिरादरी जे ॿिनि दरनि में कार ऐं तकरार तां झेड़ो थी पियो झेड़े दौरान 50 वरनि जी अरबाब ख़ातून कुहाड़ीअ जा वार करे क़तल लाश इस्पताल मुंतक़िल जेकबाबाद में यूनिवर्सिटी न हुजण ख़िलाफ़ शागिर्दनि जो एहतजाज शागिर्दनि शहीद बेनज़ीर भुट्टो लाइब्रेरी खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी शागिर्दनि जो चवणो हो त ज़िले में यूनिवर्सिटी न हुजण सबबि शागिर्दनि खे आला तालीम लाइ ॿियनि शहरनि ॾांहुं वञणो पवे थो हुकूमत मामले जो नोटिस वठे जेकबाबाद में यूनिवर्सिटी क़ाइमु करे सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में उस्तादनि जे आलमी ॾिहाड़े ते रैलियूं ऐं तक़रीबूं उस्तादनि खे भेटा पेश सजावल खैरपुर थाणो बुला ख़ान पीर जो ॻोठु टंडो आदम उॾो लाल स्टेशन ऐं ॿियनि शहरनि में तक़रीबूं जेकबाबाद ऐं फैज़गंज में बि उस्तादनि जे आलमी ॾिहाड़े ते रैलियूं कढियूं वियूं

गंबट वेझो बडी अग जेड़े दौरान कतल कल बिन सगन भाइरन जो केस दाखिल गोठ उस्मान नारे जो में बिन भाइरन राशिद मोहकम दी नारे जो के कतल कयो वे हो मकतूलन जी अमर रानी खातू जी फरियाद ते अठ जवाबदारन खिलाफ केस दाखिल पुलिस बिन मुख्य जवाबदारन नसर ए मोहम्मद नारे जो के गिरफ्तार करे वरतो।

0: चंडोलियाल में मुख़्तलिफ़ सरकारी खातनि जे माज़ूर मुलाज़िमनि जो पघारूं न मिलण ख़िलाफ़ एहतजाज। माज़ूर मुलाज़िमनि 8 महीननि खां पघारूं न मिलण ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। एहतजाज कंदड़नि जो चवणो हो त पघारूं न मिलण सभु फाका कशी वारी ज़िंदगी घारियूं पिया, पघारूं ॾिनियूं वञनि। रोशनीअ जी मदद सां एसाबी खेलनि जी सरगर्मियुनि खे कंट्रोल करण जो रस्तो हमवार कंदड़ टिन साइंसदारनि फिज़ियोलॉजी ऐं तिब जो नोबेल इनाम हासिलु करे वरितो। फिज़ियोलॉजी ऐं तिब जो नोबेल इनाम हासिलु कंदड़नि में अमरीका जो कार्ल सावरोथ, जर्मनी जो पेट्रिक हेगमेन ऐं जॉर्ज नॉगल शामिल। टिन्ही साइंसदारनि जी तहक़ीक़ सां पतो पियो हो त दिमाग़ कीअं कमु करे थो, यादाश्त ऐं रवियनि खे कीअं जोड़े थो। ॿियनि शोबनि में बि कमु कंदड़ साइंसदारनि खे नोबेल इनाम ॾिनो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
5: अच्छा, variants सबके different, लेकिन choice सबकी है।
6: Super white.
7: सिंध के माथे का झूमर
8: GFM 88 Network.
7: सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।

0: ਹੀ ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੇ ਅਵੀ ਕਾਲ ਪਿਆ ਕਰੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ 2334-3025-786 0334-3525-786 ਅਸਾਂ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੋ ਕਾਲ ਕੈਂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਜੇ ਲੈ ਅਟੈਂਡ ਥਾ ਕਿਉਂ ਕਾਲ ਕੇ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ दिलीप विछोड़े जी मारे लाए मुखे सूरन सन सतायो
1: जी दीदी तमाम बेहतरीन गानो इनके पूरो हला जा जरूर
0: सही पूरो गानो हले के बुदे नमन से कदी केर पे बुदे
1: जी रस्ता वाली बारे मलक मुंद बलोच है अब्दुर रहमान लगारी है प्यारो दोस्त है तांजो मलक मुंद बलोच मोहम्मद सिद्दीक पाड़ो गया जेके बुदन पे सबनी के कोट सारा सलाम
0: कुर्ब कुर्ब मेहरबानी वालेकुम सलाम।

0: GFM88 Radio Network. ॿुधो पिया सिंधड़ीअ जी शाम ऐं उन में अवां लाइ यूनिस बकारी जूं मोहबतूं ऐं सलाम। ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। जी फ़क़ीर आमिर जिन जी साहब नोटे जी नगरी खां वेलकम चवंदासीं तव्हांखे।
1: बिल्कुलु, बाबा तव्हांजो प्रोग्राम बिल्कुलु।

0: वालेकुम असलाम मोहबतूं मिठावाणो कुर्ब साईं
1: घणा घणा असांजा घणा घणा सलाम असांजे दोस्त तमामु वॾी महिनत करे तव्हांखे प्रोग्राम वधारो गुलाब
0: महिरबानी महिरबानी लख थोरा साईं ओके जनाब फ़क़ीर आमिर जिंझी जी हीअ कॉल छा मुंहिंजो आवाज़ अञा ताईं पहुचे पियो छा अव्हां जी ख़्वाहिश आहे शामिल थियण जी जेकॾहिं हा त पोइ 2334-3525-786 ते कॉल कयो ॾिसंदासीं त हाणे कॉल ते केरु आहे असां सां गॾु हलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: साईं केरु साहब ऐं किथां खां छा हाल आहे मिठा माण्हू सुहिणा साईं ख़ुश आहियो ठीकु आहियो अलहमदुल्ला महिरबानी अवां जूं अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे आबाद हुजो ख़ुशि हुजो
1: ॾाढो प्रोग्राम जो लुत्फ़ ॾेई रहियो आहे ऐं तव्हांजो प्रोग्राम माशाल थोरो थोरो ॾखण जी हीर बि लॻी रही आहे सखर में ऐं प्रोग्राम मस्तु लॻे थो
0: हा तमामु घणियूं मोहबतूं तव्हांजो सुहिणा साईं
1: थी सघे त जो असांखे उस खां मिलो थोरो कलाम ॿुधाईंदा
0: हाज़ुर साईं कोशिश कंदासीं पंहिंजे दोस्तनि खे सलाम कलाम कंदो
1: काफ़ी दोस्त आहिनि इरफान साहब देबो ऐं ज़वान मोहन बजल शबाणी सिकंदर अली शबाणी चोन कुमार कोलिया ऐं ॿिया जेके बि दोस्त ॿुधी आहिनि नाज़ नज़र खान सलाम
0: वालेकुम असलाम वालेकुम असलाम मोहबतूं मिठा माण्हू ख़ुशि हुजो आबाद हुजो

0: जी जनाब, ये हसीन जिंदगी गुजरी तो वही, तो ख्वाब हो या ख्याल हो, अटेंड क्यों था रिश्ता केर ऐसा कर हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: केर साहब है किथा का
1: मुची बोले मा निजाम मानी करियो गावर का फर्स्ट टाइम तो है प्रोग्राम मा बुदो भाजु न
0: मिठा मानो मा सदके वने खुश हो जो आबाद हो जो अखन ते वेलकम
1: असल मा जे ऐसे में दौड़ी ना है पर मा जे चेक कयो ऐसे में लगी जो यार ऐसे दौड़ हले
0: दौड़ ऐसे में जो आए साईं भला बाहर आई जे उनन इलाकन में जते अन्या भी वडी एंटरटेनमेंट कोने जते मोबाइल एंड सिग्नल इतरा कोने उते एफएम वने तो एफएम खिदमत करे पियो साईं
1: जना माशाल्लाह जबरदस्त आवाज सुठी नसीहत अल्लाह पाक भाई कामयाब के को काम यार अज बुधरा शरीयत
0: केड़ो गान हुकम करे
1: उन्हीं गानो है फोदिया सुमरो जो तवी तवी विदा लगंदा दी फोदिया सुमरो जो आवाज में भी आए
0: अच्छा दिसू था फौजिया तसा प्ले कर चुका हूं बाकी को बियो आवाज जकर हुंदो अमी विदा लगाईंदा दी दिसंदा सी जकर संग मिले तो जरूर साईं खुश हो मोहब्बतू मिठावानो मोहब्बतू तानियो प्यारे पेंजा बिला मेहरबानी लखे थोरा।

0: Japan. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White Age Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye. Skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White Age Beauty Soap se mile. Chamakta nikhar taazgi ke saath. White Age Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज.
3: ॾाढो सुठो
2: जी ए एफ एम 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: रुस्तम अली पवार।
1: रुस्तम अली पवार साहब अवा सके केर पे बुदे
0: दोस्त अभियान दिलीप कुमार मेघवार जोन कुमार कोहली नाग फकीर मामन जलालानी कुर्बान अली खास के लिए के दोस्त बुधन पे सभी के सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम तमाम घनी मोहब्बत हो तहां जो साईं भली कर थैंक यू वेरी मच। ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क जो आवाज साजे आवाजे साथ में सिंधड़ी जी शाम अवां जे नाम ते ॾिसंदासीं केर आहे असां सां गॾु। हलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम यूनुस भाम ख़ुशि आहियो ख़ैर आहे
1: अलहमदुल्ला। केर साहब ऐं किथां खां रामचंद कुमार कोहली खे भली कार था चऊं ऐं असां गॾु केर पियो ॿुधे साईं। वालेकुम अस्सलाम किरोड़े कुर्ब तव्हांजा ख़ुशि हुजो आबाद हुजो मोहबतूं साईं जी जनाब लखत जी हाँ केर हों गए केर थो अजो किशो जो हिस्सो बनबो तो उनके लिए कॉल अटेंड क्यों पे। हलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम केर साहब है किथा का जी जी अवा सा केर पे बुधे
3: मुझे पुट सान कान
1: जी जी
3: अब्दुल इंजीनियर
1: जी जी वालेकुम असलाम किरोड़े कुर्ब मिठा मानो किरोड़े कुर्ब थैंक यू लख थोरा तांजी जी मज़े समईन GFM 88 रेडियो नेटवर्क जी सखर लाड़काने मीर प्रकाश मातली मटियारी मेहरापुर मोरो सकरन खे अवां हिकी वक्त ॿुधो ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो अस्सलाम वालेकुम केरु साहब। हलो अस्सलाम वालेकुम केर साहब ऐं किथां खां जी जनाब।

0: जिसना सीधा हाणे सागर काल ते केर आहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: केर साहब है किथा का?
1: सही काच कोट कुना सुन चाड्या हे वफा सा चाड्यो।
0: जी चाड्या साहब वहां से कडवे केर पे बुदे
1: चाड्या सही बाबा चाड्या मैं बा मजदूर चाड्यो मस्जिद चाड्यो।
0: जी जी लख थोरा मज़ सामीन शो आख़िरी लमात्रा वधे थो प्यारे।

0: कॉल टेकर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, केर साहब है कितना खा
1: नयाली कलोड़ो कंडिया देखा।
0: अच्छा हाल है कलोड़ा साहब, खुश आयो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, जो आए ता जी ता बुदायो।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, वहां से कद भी केर भी बुदे
1: मुझे बाबा मामा जमीन कलोड़ो आए मेरे तार कब के भारत बने बदना सब ने के सलाम आई मुझे लतवा गुरंता के तो सही थे।
0: इंशाल्लाह अल्लाह से कंदो तो ठीक थी वेंदा, बिल्कुल हशाश बशाश थी।

घणी कूड़ा कसम फिरी ने अड़ो जबरदस्त सुरीलो दर्दीलो आवाज गजी बुध पा कॉल पे अटेंड करे राठो दिसो था कॉल पे केरे हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी केर पे गलाइन बाबर ता जी पहली कॉल आई हुई मुझे ख्याल में चलो ता सा करबे केर पे बुदे जी जी जल्दी ना लाओ भाऊ टाइम घटा मेहरबानी लखतोरा अच्छा काफी असा ये नोट करना है तो कदे कदे मानो आवाज चेंज करे बी कॉल करे तो ये ना कहो प्लीज रेडियो है ये अवाजी कौमी अमानत है असा जो को मसलो को ने आर जो चरो ब कलाक गला हलियो विंदो पर अवाजी मोहब्बतन के तारीख में याद रखियो विंदो प्लीज प्लीज हर के जला 2 मिनट छियो वारी वारी से कॉल के एकड़ो कॉल करे एकड़ो दफो करे वरी बेन जो कॉलो बुधो ताकि सदी सिंध एक थी वजे सजी सिंध प्रिय जो पाछो हुए केर कंजे लाइ नाराज न हुए मोहब्बत में मोहब्बत न हो हेलो अस्सलाम वालेकुम अदर तुम आवाज चेंजर लगल है आवाज चेंज पे खत्म करो प्लीज प्लीज आवाज चेंजर लगल है भला ये छो था करो दोस्तों कॉल दे के रहा हेलो अस्सलाम वालेकुम

0: हेलो आवाज कौन पे अच्छी ओके जनाब शायद सिग्नल जो इशू है अदा जिता कॉल करे पे ओदे सिग्नल कटे जनाब छिनी छिनी बेडो मिठा मां गरीब के ही ट्रैक मास्टर फतेह जो आवाज है हाँ यूनिस बकारी एक कॉल अटेंड करे तो रिश्ता केर है हेलो अस्सलाम वालेकुम केर साहब है किथा का जी अदा बी आवाज का केर केर पे बुदे
1: या दोस्त मंताज चांडियो अदनान चांडियो सच चांडियो इंतियाज चांडियो जुल्फकार चांडियो
0: तमाम घणी मेहरबानी लख थोरा तहां जा खुश हो जो थैंक यू थैंक यू

0: सकता हूँ?
1: जी जनाब, सासी कॉल तो कह रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
2: एयरपोर्ट सक्कर
1: चाल सही खुश आयो नालो एक दफो रिपीट कजो।
2: दुआ बाबा दुआ तमा खुश आयो बियो कहरा।
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुचो तमा केर साहब पे गलाय नालो रिपीट कजो छो तो सवेरे कॉल अटेंड करण गाग में ताई नालो गुजरी गयो।
2: अच्छा फकीर रजवली जुड़े जो नज़द एयरपोर्ट सक्कर
1: चाल फकीर सही खुश आयो ठीक आयो चंगा भला मतारा जोड़
2: लखे साना माता वासा कुछ दिए अगमज भी बढ़िया कर अगमज गलाय चुको हम बाबा पर आखिरी काल लगी टाइम घट मिलियो।
1: हाँ साईं टाइम हुई भी घट हों दो अच्छा करने कॉल्स ते रशिया तमाम घनी आई ताँ जो मेहर पानी दोस्तों ने नाला खड़ा पसंद कर दो
2: हिटलो लतीफ साईं जो बेहत न बुधायो
1: बिल्कुल बुधायो बिस्मिल्ला
2: बिरह दी बानी कैखा सिखे सुपारी
1: जी जी
2: हाणे ॾींदई हथ में मस कलम कानी
1: जी जी
2: हरफ पुछंदई हे किहिड़ो ज़ाहिर ज़बानी
1: वाह वाह
2: कन अॻियां जानी कहिड़ी कंदे ॻाल्हि
1: सुभान अल्लाह ज़बरदस्त हाणे दोस्तनि
2: बस दोस्त सॼी सिंध आबाद रहे हिकिड़ो कलाम चवां आख़िर में हू असांजो हलाईंदो हिकिड़ो कलाम
1: साईं मां वाइदो नथो करे सघां छो त क्यू शीट कंप्लीट हूंदी आहे वरी इनशाला नेक्स्ट में तव्हांजी पसंदि जो गानो रखी छॾींदासीं
2: बस पोइ ईअं कयो नोट करे छॾियो
1: जी जी नोट कयूं था ॿुधायो
2: अॼु मूंखे पुनल जो ॾस आवाज़ सोना खान बलोच
1: इनशाला इनशाला ॿुधाईंदासीं ठीक आहे साईं
2: थी सघेव त आख़िर में मिड़ई हिकु ई मिसरो ॿुधाइजो
1: साईं मां कोशिश कयां थो पर छो त मां ख़ुदि हिन महिल एतिरो इंगेज आहियां जो गाना सर्च करण मुंहिंजे वस में कोन हूंदा हज़ारे कालू आहिनि कॉल मथे तव्हांजी कॉल छॾींदो
2: महिरबानी
1: आमीन आमीन ख़ुशि हुजो साईं महिरबानी लखतरा जी।

0: जी जनाब, अड़ी रीत अजो के प्रोग्राम जो सुरहा रंग अवे नाम कद सलाम केर साहब जल्दी जल्दी नालो वठी वठो मां मोकलायां पियो महरबानी अनवर चांडी साहब आख़िरी लमात में तव्हांजी कॉल आई थैंक यू वेरी मच भली कार और समीन इन ते अॼु शो पुॼाणी ते पहुचे थो ऐं यकीन तव्हांखे अॼु शो वणियो हूंदो इनशाला हयाती रही त वरी मेला मचंदा मुलाक़ातूं थींदियूं तेसि ताईं यारो यारी मोकिलाए थो यूनिस बकारी इन दुआ सां त जिते भवां जो पेर हुजे उते ख़ुशियुनि जा ढेर ऐं ख़ैरी ख़ैर हुजे उस्तादनि वालदेन ऐं वॾनि जूं दुआऊं निमन जूं छाऊं ऐं ख़ुशियुनि वारियूं हवाऊं अवां जो मुक़दर बणजनि साथ सलामत सिक सलामत अलाह निके मां
1: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: Brought to you by Supites Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics.

0: आर्ग्यूमेंट मुल्क में जबरदस्ती चलाया जा रहा है कि सिस्टम कलैप्स हो चुका है तो आप सुबह मिले। वैसे तो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मान लो तो इस्लामाबाद को थरपारकर वाले को हवाला कर दे, उसको ठीक कर देंगे, वहां के बच्चे को हर एग्जाम में टॉप करवा देंगे, उनका हॉस्पिटल्स का हाल हमने अभी अभी देखा, हॉस्पिटल्स को भी हम 100% मुफ्त करवा के आर्मी दुनिया के स्टैंडर्ड्स पे लेकर आएंगे। हमें सिर्फ इस्लामाबाद का जिम्मेदारी क्या क्या कर सकते हैं, हमेशा की तरह अब ये रिवायत बन चुका है कि हमारे घर के बच्चे टॉप करते हैं। जब वो टॉप करते हैं तो उनको मुबारकबाद देने के बजाय, उनके लिए तालियां बजाने के बजाय अपने नफरत की सियासत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम इनकी नफरत की सियासत खत्म करेंगे और थर तरक्की करता रहेगा।
1: सिस्टम जी नाकामी थे नवन सूबन वारो मन तक समझ का बाहर आए। इस्लामाबाद नाकाम थे तो इस्लामाबाद के थर वारन हवाले कयो। थर जी तरक्की ते समूरो मुल्क हैरान आए। इस्लाम कोर्ट में थर कोर फेज थ्री मनसूबे जो इफ्तिताह कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयो तो कराची में सियासी यतीमन की जमात सहुनन की सियासत कर रही है। सहुनन वाली सियासत के सिंध में आनण वाली कोशिश के कामयाब थन न डींदी। थर जा बार टॉप कन था तवा के वाधायूं डण बदरा नफरत वाली सियासत कयो था। थर की तरक्की कुछ मान के हसम ना थी। अस नफरत की सियासत के दफन कर छींदी। इस्लामाबाद जहा माहिर चवंदा हुआ तो थर जो कोयलो बेकार है, सीड़पकारी करण बेकार है। हाँ पूरा पाकिस्तान हैरान है तो थर किथे पहुंची वो है। इस्लामाबाद वालन के चवा तो भी थर जड़ी तरक्की से ध्यान दियन। यमनी फोर्सेस आबी गुजरगाह मदद बीहर टोल हासिल करे तो साहली इलाके जुबाब जो कंट्रोल संभालन बाद यमनी फोर्सेस की वही कामयाबी। यह हुकूमती फौज के तर्जमान मूजिब हुसैन के 122 अथाकन से कार्रवाई कई है, जै दौरान 1747 हूसी बागी मारी वाया। स्ट्रेटजिक सियासी ए दिफाई कमेटी जो इजलास अज रियाज में थन्द। नायब वजीर आजम इसहाक डार ख्वाजा आसिफ फील्ड मार्शल सऊदी अरब पोतल। इजलास में तुर्किया ए सऊदी अरब जहा परदेही वजीर बचाव वारा वजीर ए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी शिरकत कंदा। मक्का दिफाई माहदे से अकबराई जो जायजो वरतो वेंदो। परदेही तर्जुमान मूजिब पाकिस्तान इलाका यमुन इस्तेकाम लाइ किरदार जारी रखने वाले अजम से कायम है। ईरानी फौज नए जंग की सूरत में अमेरिका की मेजबानी कदड़ समूर मुल्क के निशानों बढ़ाने जो ऐलान कर छो। ईरानी फौज के सरबराह जनरल अब्दुल हई है तो खिते में नई जंग शुरू कई वही तो बाह खिते में अमेरिका की मेजबानी कदड़ समूर मुल्क पहुंचंदी। कें भी कार्रवाई जो तुरंत सख्त जवाब दिनों वो। एपी की सूरत हाल से वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा बीहर सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करने जो फैसलो। जरियन मूजिब वजीर आजम ए सदर में थन्दड़ मुलाकात दौरान केपी की सूरत हाल अपोजिशन से थियल गालन जो जायजो वरतो वेंदो। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज या इमरजेंसी वाले ऑप्शन से भी गालू करने जो इम्कान है। हुकूमत अपोजिशन विच में थियल गालन की नाकामी जो जिम्मेवार केर। हुकूमत अपोजिशन जहा एक बेते इल्जाम जारी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी है तो न तो लगे तो मुस्तकबिल में बीहर गालू थन्द। वफाकी हुकूमत केपी में इमरजेंसी वाले ऑप्शन से गौर कर रही है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर हुकूमती होड सब गाल नाकाम थन। पीटीआई केपी हुकूमत न छींदी ए नई असेंबली टोड़ी। लॉन्ग मार्च जारी है। सोहेल आफरीदी लीड कर रो है। रियासत ए केपी जो मसलो सियासत न पर दहशतगर्दी है। रियासत जो फैसलो दहशतगर्दन से गाल न पर कार्रवाई है। दिफा वाले वजीर ख्वाजा आसिफ है तो बिन साल दौरान केपी में दहशतगर्दी जहा 6000 का वाकया थे। 1200 शहादतू थ 37 हमलन में अफगान शहरी मुलवस निकता। 14 आपघाती हमला थे जिनमें अक्सरियत अफगान शहर की है। सीटीजी केपी वट रुगो 17 बख्तरबंद गाड़ियों। केपी हुकूमत बुधाए तो दहशतगर्दी की खात्मे लाए वटन केड़ी पॉलिसी है। दहशतगर्दीअ खे हिकु साज़िश तहत मड़ियो वियो आहे। ग़लति पॉलिसियुनि सबब मुल्क विरहाइजी रहियो आहे। लॉन्ग मार्च खे ख़िताब कंदे के पी जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी चयो त पंहिंजी अवाम सां गॾु बीहण बेवकूफ़ी आहे त मां बेवकूफ़ आहियां। हुकुमराननि वटि अञा बि वक़्तु आहे त अवाम ॿाहिरि निकितो त केर बि कंट्रोल करे न सघंदो। पिशावर में के पी जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी ख़िलाफ़ एहतजाज। शहरनि सोहेल आफरीदी ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे नारेबाज़ी कई। अॻवाननि चयो त सूबे में दहशतगर्दी वधी रही आहे। सोहेल आफरीदी अमुन अमान ते ध्यानु ॾियण बदिरां एहतजाज करे रहियो आहे। अवाम सोहेल आफरीदी ख़िलाफ़ थी वियो आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
4: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरंट ऐं सकरण जो आवाज़
5: GFM 90.8।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: पंहिंजो शहर पंहिंजो घर सकरंट ऐं सकरण जो आवाज
1: GFM 90.8 खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 9 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream.
5: रियासत ऐं के पीअ जो मसलो सियासत न पर दहशतगर्दी आहे. रियासत जो फ़ैसिलो दहशतगर्दनि सां ॻाल्हियूं न पर कार्रवाई आहे. बचाव वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ़ चयो आहे त 2 सालनि दौरान ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में दहशतगर्दीअ जा 6,000 खां वधीक वाकिया थिया आहिनि. 1,200 शहादतूं थियूं आहिनि. 37 हमलनि में अफ़गान शहरी मुलविस निकिता आहिनि. 14 आपघाती हमला कया विया जिन में अक्सरियत अफ़गान शहरनि जी आहे. CTD ख़ैबर पख़्तूनख़्वा वटि रुॻो 17 बख़्तरबंद गाॾियूं आहिनि. ख़ैबर पख़्तूनख़्वा हुकूमत ॿुधाए त दहशतगर्दीअ जी ख़ात्मे लाइ वटनि कहिड़ी पॉलिसी आहे. दहशतगर्दीअ खे हिक साज़िश तहत मढ़ियो वियो. ग़लति पॉलिसियुनि सबब मुल्क विरहाइजी रहियो आहे. लॉन्ग मार्च खे ख़िताब कंदे ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी चयो आहे त अवाम सां गॾु बीहणु बेवकूफ़ी आहे त मां बेवकूफ़ आहियां. हुकुमराननि वटि अञा बि वक़्तु आहे त अवाम ॿाहिरि निकितो त केरु बि कंट्रोल करे न सघंदो. यमनी फोर्सिस आबी गुज़रगाह बाबुल मदब जो ॿीहर कंट्रोल हासिलु करे वरितो. साहिली इलाइक़े ज़ोबाब जो कंट्रोल संभालण बाद यमनी फोर्सिस जी वॾी कामयाबी. यमनी हुकूमती फ़ौज जे तर्जुमान मूजिबि हूसिन जे 1122 थाकनि ते कार्रवाई कई आहे जंहिं दौरान 1747 हूसी बाग़ी मारिजी विया आहिनि. मका मुआदे जी स्ट्रेटजिक सियासी ऐं दिफ़ाई कमेटीअ जो इजलास अॼु रियाज़ में थींदो. नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, ख्वाजा आसिफ़ ऐं फील्ड मार्शल आसिफ़ मुनीर सऊदी अरब पहुतल. इजलास में तुर्किया ऐं सऊदी अरब जा परॾेही वज़ीर, दिफ़ा वारा वज़ीर ऐं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ शिरकत कंदा. मका दिफ़ाई मुआदे ते अॻभराईअ जो जाइज़ो वरितो वेंदो. परॾेही तर्जुमान मूजिबि पाकिस्तान इलाक़ाई अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ किरदारु जारी रखण वारे अज़म ते क़ाइमु आहे. ईरानी फ़ौज नई जंग जी सूरत में अमेरिका जी मेज़बानी कंदड़ समूरनि मुल्कनि खे निशानो बणाइण जो ऐलान करे छॾियो. ईरानी फ़ौज जे सरबराह जनरल अब्दुलहई चयो आहे त खिते में नई जंग शुरू कई वई त बाह खिते में अमेरिका जी मेज़बानी कंदड़ समूरनि मुल्कनि ताईं पहुचंदी. कंहिं बि कार्रवाईअ जो तुर्त ऐं वधीक सख़्तु जवाबु ॾिनो वेंदो. वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ सां पोलैंड जे वज़ीर जी मुलाक़ात. इलाक़ाई ऐं आलमी मामलनि ते ॻाल्हियूं. विच ओभर जी सूरतहाल ते बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई. कारोबारी राब्ता वधाइण ते बि इतफ़ाक़. वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़ जो चवणु हो त इलाक़ाई छिकताण जे ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियुनि ऐं सफ़ारतकारीअ जी ज़रूरत आहे. थर पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल तब्दील करे सघे थो. थर जो कोयलो पाकिस्तान जी तवानाई ऐं सनअती ज़रूरत लाइ अहम ज़रियो बणिजी रहियो आहे. इस्लामकोट में तक़रीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त IPPs दरामदी कोयले बदिरां थर जे मक़ामी कोयले ॾांहुं मुंतक़िल थी रहियूं आहिनि. सिंध हुकूमत फेज़ 3 मनसूबो 100% पंहिंजे ख़र्च ते मुकमल करे रही आहे. थर फेज़ 3 सां सालियानो अटिकल $220 million वाधू नाणे जी बचति थींदी.
2: GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए. Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में. अ प्रोजेक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान.
6: सुबह

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

छोड़ जाने की वजह भी बताऊंगा, सबको कमी मुझ में थी, मैं खुद को खराब लिखूंगा। मैं छोड़ जाने की वजह भी बताऊंगा, सबको कमी मुझ में थी, मैं खुद को खराब लिखूंगा। मेरे चेहरे पे ये मुफलसी अजल से तो न थी। मेरे चेहरे पे ये मुफलसी अजल से तो न थी, कितना हुस्न था मुझ पे वो सारा शबाब लिखूंगा। मैं इश्क पे अब एक किताब लिखूंगा, गुजरे जो मुझ पे सारे अजाब लिखूंगा।

प्रोग्राम जी इब्तदा एक खूबसूरत रोमांटिक प्यार भरे गीत से कहें गजी कर गीत इंजॉय कहें उन वरी सागी कबियों में असा खोड़ सारूँ मोहब्बत भर प्यार भर दिल जो गालू अच्छो तो गजी ये गीत इंजॉय क्यों

ऐसा करते हैं, एक मुलाकात रख लेते हैं। ऐसा करते हैं, एक मुलाकात रख लेते हैं, चाय की प्यालियां कुछ सौगात रख लेते हैं। ऐसा करते हैं, एक मुलाकात रख लेते हैं, चाय की प्यालियां कुछ सौगात रख लेते हैं। मैं भी उदास हूं, तुम भी गुमसुम जाना। मैं भी उदास हूं, तुम भी गुमसुम जाना। महफिले मुशायरा इस रात रख लेते हैं। मैं भी उदास हूं, तुम भी गुमसुम जाना। महफिले मुशायरा इस रात रख लेते हैं। कुछ तो भरम रहे कि हम भी कभी साथ रहे। कुछ तो भरम रहे कि हम भी कभी साथ रहे। हम तोहफतन एक दूसरे की आदत रख लेते हैं। ऐसा करते हैं, एक मुलाकात रख लेते हैं।

0: प्रोग्राम दिल जी गल से कर रहा हूं अब चौहान आया वहां बुधी रहा हो जीए एफएम नेटवर्क न्यू ट्यून कैल सबनी तमाम प्री प्यारन दिलबर दिलरुबा दोस्तन के वेलकम भली कार खुशामदीद सबनी दोस्तन के एक भेरो भी है जो का शेड्यूल पे जो प्रोग्राम दिल जी गाल जो टाइम टेबल बुधाई दो ना जेके रेगुलर कॉलर्स आहिन लिसनर्स आहिन उनन जे इल्म में या गाल हुंदी त प्रोग्राम दिल जी गाल हाने मंडे खा थर्सडे यानी के सूमर खा खमिस ताई पीर से जुमेरात तक असा प्रोग्राम हलंदो आई टाइमिंग सागी हुंदी 9 टू 11 हियर वक्त ही रहो आए एकड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खा वापस वरंदा से आया वहां सा कचहरियों कंदा से दिल जो गालियों का
1: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम
1: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक
3: खुशखबरी आपके अपने शहर मीरपुर खास में एक रोजा मुफ्त डेंटल मेडिकल कैंप का तारीख 11 अक्टूबर 2026 बरोज इतवार सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक लगाया जा रहा है जिसमें डॉक्टर कल्पना कुमारी BDS RDS दांतों और मुंह की बीमारियों की माहिर दांतों के दर्द मसूड़ों से खून आना दांतों की सफाई दांतों में कीड़ा लगना और मुंह की तमाम बीमारियों का मुफ्त चेकअप करेंगी एड्रेस अलनूर मेडिकल सेंटर हरी क्वार्टर्स मीरपुर खास मजीद मालूमात के लिए राबता नंबर 03140221334
4: आँखों के सबसे बड़े इदारे के मशहूर और तजुर्बेकार सीनियर फेको सर्जन डॉक्टर अब्दुल अजीज कुरैशी और सर्जन डॉक्टर इसरार मोहम्मद हयात खान सफेद मोती का ऑपरेशन बजरिया लेजर फेको काले पानी का इलाज और ऑपरेशन पर्दों की बीमारियों का इलाज और आँखों की दीगर बीमारियों का इलाज करते हैं रोजाना सुबह 10 बजे से 1 बजे तक शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक इतवार तातील है और जुम्मे को ऑपरेशन किए जाते हैं एड्रेस सर्जन डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात खान लेजर आंखों का अस्पताल सर सैयद रोड गरीबाबाद मीरपुर खास फोन नंबर 03032617077

दरिया ऐसे की लहरों के संग रमा दमा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क सिंध।

प्रोग्राम दिल जी गाल सा गदा हुआ अब चोहण आया हूं बुधी रहा हूं जी एफएम नेटवर्क आए दिल जी गाल जे बुधन सबनी दिलबा दिलबा दोस्तन के वेलकम बलिकार खुशामदीद

0: की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान
1: कमर्शियल ब्रेक
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: दे गाइड अस दे सपोर्ट अस दे इंस

0: Teachers Day. We proud on you.
1: सिंध धरती जा मतवाला असी आयो मीरपुर खास वारा ऐं मीरपुर खास जो आवाज GA FM 88 मीरपुर खास जो आवाज।

प्यारे दोस्त है फैसल जट, हमारे बहुत ही अच्छे प्यारे भाई दोस्त हैं, मोहब्बती इंसान है फैसल जट साहब, ने मुझे बार बार टैक्स किए फैसल साहब लेट शामिल करने के लिए, मैं माजरत खा हूँ। और जो है कि सिटी मोटर सक्कर से बासित चौहान, बासित भाई आपका नाम शामिल कर लिया हमने प्रोग्राम में, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश है, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, मोहब्बतें आपकी। जी तो बिना कहें ताखीर जे वरी सिलसिलो जोड़ी दासे अवां सां गाल बोल जो न खापो आज फरमाइशों में हुंदियो शामिल। अस्सलाम वालेकुम केयर साईं के थागा। हेलो

0: असा बो कॉलर शामिल करण की कोशिश कंदे प्रोग्राम में शायद कोई टेक्निकल इशू है अस्सलाम वालेकुम खैर साईं किथां खां हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम सर
0: वालेकुम सलाम खैर प्यारा किथां खां
1: आबिद भाई सना खान मस्त वाला है जो देखो मामले
0: साईं मुजा वेलकम वाली कार खुश आमदीद के डालन खुश है
1: खैर सर खैर अल्हम्दुलिल्लाह सर बिल्कुल बिल्डिंग भी नहीं लिखी है वो बिल्कुल था सर सर कनेक्ट किया है बिल्कुल कनेक्ट
0: जी जी जी प्यारा जी प्यारा हमारे नए शेड्यूल के बारे में हम जान हुंदी
1: जी सर बिल्कुल शेड्यूल था जो है तो बस उम्र का खमिस पानी जो है तो प्रोग्राम चले रहन दाव अगली दिन का टाइम बुधाई रात ये सर
0: जी प्यारा सा पहुंची आ से जो को टाइम आवा के बुधायो से नते हाजिर थे से
1: जी सर बिल्कुल आसान टाइम पे मैं सर इंतजार ही ना सभी ने कर बाद में शुरू की और इंटरव्यू का कर प्रोग्राम बुधाई
0: लख थोड़ा मोहब्बतों यो इंतजार जो ना थोड़ा घणो जो का तो दुख जरूर हुंदो आ पर इन में प्यार अन्या वधंदो आ चस
1: जी सर इन प्यार बदो आता है गाल मुताबिक जो क्या है सा गाल ने अमल करे बिल्कुल जो क्या है सर सा बड़ी खुशी थी दिया सा बड़ी जो क्या है हर एक जान सुजान थी दिया सा नंदे वरी जो सरकार के प्रोग्राम मा सा इतनी मालूम मिल दिया जो सा जो ख्याल है जब भी बिल्कुल करना हो सरकार के प्रोग्राम में मालूम रखी
0: ता सभी जो है ना जिते जिते असा नेटवर्क वही रो है उर्दू सिंधी जेके भी असाजा सिंध में रहंदड़ भाईर आन दोस्त आन बया भी आ ही सिंध जी सकाफत आ कल्चर आ प्यार मोहब्बत अमन एहतराम इज्जत हर इंसान पहंजे पर में पहंजे मिजाज सा पहंजे अंदाज सा वडन जी इज्जत कंदो आ आए असा के वधी
1: सर बिल्कुल वो तो वडड़ा जी हमेशा हर वक्त असा के इज्जत करण गर्जी असा करना जान पर ता ने प्रोग्राम का जिका कर मालूम आ मिले दी निगाह में असा को वडो मना खुश रहना सर बिल्कुल
0: चा चवण चाहिदो के दोस्त जो नाम शामिल करण चाहिदो को
1: हां सर दोस्त ने टाइम जेके बुरी रहे आन मा सबन यो चनम ते थोड़ी थोड़ी गालन जे को देख दे नाराज ना थोड़ी थोड़ी गालन जे को छोटो गालन दे वडा मतला थी ना वडा ये लगड़ा थी नान जो अगर तुम जान भी जया थी सीधी थोड़ी थोड़ी जालन तो पान में रसो न पान में एको के मौके रखियो हर दुखे वक्त में जो अगर कद साथ दे करे पहले वक्त के जो अगर मथो दे करे ना के टक्कर दे करे अगना वदन
0: वडी मेहरबानी प्यारा कुर्ब
1: कुर्ब कुर्ब
0: वडी मेहरबानी वालेकुम अस्सलाम

दोस्तों अच्छोदगत जी जलाल चांडिया जी खूबसूरत आवाज में ही प्यार भरे गीत बुधूं मजा पखी परदेसी

0: आर्ग्यूमेंट मुल्क में जबरदस्ती चलाया जा रहा है कि सिस्टम कलैप्स हो चुका है तो आप सुबह मिलाएं। वैसे तो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मान लो तो इस्लामाबाद को फिर पाकर वालों का हवाला कर दें, उसको ठीक कर देंगे, वहां के बच्चे को टॉप हर एग्जाम में टॉप करवा देंगे, उनका हॉस्पिटल्स का हाल हमने अभी अभी देखा, उनको हॉस्पिटल्स को भी हम 100% मुफ्त करवा के आर्मी दुनिया के स्टैंडर्ड्स पे लेकर आएंगे। हमें सिर्फ इस्लामाबाद का जिम्मेदारी दे देंगे, वहां हम आपको दिखा देंगे कि थर थर के नौजवान, थर के सियासतदान क्या क्या कर सकते हैं। हमेशा की तरह अब ये रिवायत बन चुका है कि हमारे घर के बच्चे टॉप करते हैं, जब वो टॉप करते हैं तो उनको मुबारकबाद देने के बजाय उनके लिए तालियां लगाने के बजाय अपने नफरत की सियासत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम इनकी नफरत की सियासत खत्म करेंगे और थर तरक्की करता रहेगा।
1: सिस्टम जी नाकामी थे नवन सूबन वारो मन तक समझ का बाहर है। इस्लामाबाद नाकाम थो है त इस्लामाबाद के थर वारन हवाले कयो। थर जी तरक्की थे समूरो मुल्क हैरान है। इस्लाम कोट में थरकोल फेस थ्री मनसूबे जो इफ्तिताह कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयो है त कराची में सियासी यतीमन की जमात सहुनिन की सियासत करे रही है। सहुनिन वरी सियासत के सिंध में आणण वाली कोशिश के कामयाब थे नींदी। थर जब और टॉप कन था तवा के वाधायूं डेण बदरा नफरत वाली सियासत कयो था। थर जी तरक्की कुछ मानुन के हजम नाहे थी रही, असा नफरत जी सियासत के दफन करे छलींदासी। इस्लामाबाद जा माहिर चवंदा हुआ तो थर जो कोयलो बेकार है, सीड़पकारी करण बेकार है। हाने पूरो पाकिस्तान हैरान है तो थर किथे पहुंची वयो है। इस्लामाबाद वारन के चवा तो हू बे थर जड़ी तरक्की ते ध्यान दे। केपी की सूरत हाल से वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा बीहर सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करण जो फैसलो। जरियन मूजिब वजीर आजम ए सदर विच में थींदड़ मुलाकात दौरान केपी की सूरत हाल अपोजिशन से थियल गालन जो जायजो वरतो वेंदो। केपी में गवर्नर रॉज एमरजेंसी वाले ऑप्शन से भी गालू करण जो इम्कान।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।